जय गुरु भाई बहनों, आप सबनों गणमान स्वागत करो हूँ हमारी आज नी परबात नी सभा में। आप सब हम रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते मैं हूँ आपने हाथे आपनी बुनंजलि पारेश्वर ने आज वार गुरुवार ने तारीख 11 जून 2026 नो दाड़ो है। भाई बहनों में देखी रहा हूँ की अपने स्टूडियो की घड़ी में परबात ना 6 बजे के हैं। तब आपने शुरुआत करो परबात नी सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। तो भाई बहनों आज सभा की शुरुआत करेंगा सप्ते की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक एना में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्ति में गीता में भणस क्रम में अगाड़ी बढ़ेंगा किसान भाई बहनों तक जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम सकोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मुँह आपनी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे एनी कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगा जेने कहीं बालकों बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप सांभी सकोगा ठीक 7 वगे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मुँह आपनी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे एनी कड़ी में अपने अगाड़ी रुख करेंगा तमारी ने अमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने आड़ी आ कार्यक्रम आप सांभी सकोगा ठीक 7:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे एनी कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून नियम तक जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप सांभी सकोगा ठीक 8 वगे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर एटले मुँह ने मारे हाथे रहेगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट अणस क्रम में बढ़ते तक अपना रुख करेंगे राजस्थानी गीत तक जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत आ कार्यक्रम आप सांभी सकोगा ठीक 8:30 माते श्रोताओं बिजू कार्यक्रम शुरू थागा ठीक 9 वगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम लेने आवेगा प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल इन्हें बाद भाई बहनों ठीक 9:30 माते आप हमरोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी बहन बुनो हमारी आप तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 बजे आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी इन्हें बाद बहन बुनो शुरू था का अपनी पसंद का कार्यक्रम जिन्हें आप हम रिशको का परबाते 11 तक की बोपरनी 1 वगे निवास में बहन बुनो अगर आप भी अपनी फरमाइश न गीत ने हम रोचा हो तो मैंने लकीन मोकली सको फिल्म नाम गीत ना बोल आपनो नाम ने अपना गाम नो नाम हमारे अणा व्हाट्सएप नंबर माते हमारो नंबर है 9460051234। तो बहन बुनो आ तो हती हमारी आज ने परबात ने सभा में प्रसारित थवावाती कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा अब आवो अपने सभा ने शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की

जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का।
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
2: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
8: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
9: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
10: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
11: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
12: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
13: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
14: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: किसान भाई बोन गीत तो आयशु पुरु नड़ास गीत हाथे पड़ा सूटा उम्मीद कर की जे भी बातें रही कार्यक्रम खेतीवाड़ी माध्यम थकी ये आपने गमे होंगे। आपने अमारू आज नो आ कार्यक्रम ने अन्य सालवा वाला गीत संगीत केवा लग्या एना बारे में आप राय सुझाव आली शको अमारे ना पता माते
1: होवे भाई बोनो लखी लो अमारू पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाई बहन फेरी मलंगा अणास कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
1: राम राम राम राम, राम।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है

नर्तकी निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जो परंपरागत खेल हैं उनके माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो क्या ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवा दें हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जो परंपरागत खेल हैं वो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी जरूरी है और साथ ही उन्हें शिष्टाचार सिखाते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो कशिश, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं मांगेला जी सर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं की इन विशेष बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे।
0: जी बिल्कुल
1: सर। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: जी
1: सर, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम सच्चा बचपन से निरंतर जुड़ते रहते हैं और बच्चों से जुड़ी विशेष जानकारी आप हमारे श्रोता साथियों को देते हैं।
2: जी।
1: सर, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि परंपरागत कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो बच्चों को शिष्टाचार भी सिखाते हैं, साथ ही उनका विकास भी इन खेलों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है।
2: जी।
1: तो सर, आज आप सबसे पहले हमारे श्रोता साथियों को यही बता दीजिए कि परंपरागत खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
2: जी, तो बहुत अच्छा विषय है आपका कि परंपरागत खेल शुरू से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहा है।
1: जी जी।
2: और शुरू से बच्चे हैं इनमें काफी रुचि लेते हैं। और देखिए, परंपरागत खेलों में शिष्टाचार बिल्कुल छिपा हुआ होता है, साथ में जो उसके अंदर आप बात करें विकास की, तो उम्र के अनुसार विकास भी उनके अंदर छुपा रहता है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये वर्तमान की आवश्यकता है अभी वर्तमान में, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल जैसी चीजें हैं उनके माध्यम से हम पुराने खेलों को भूलते जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: और ना ही हमारे माता पिता है, हमारा समुदाय है, उन खेलों की ओर बच्चों को अग्रसर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वो प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को बच्चों को लेकर सक्रिय रहना होगा।
1: जी जी।
2: और जो हमारे परंपरागत खेल है, जो हमारे संस्कृति हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको हमें वापस से पुनः जीवित करके हमें बच्चों को शिष्टाचार के साथ विकास में भागीदारी बनाने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आप देखोगे कुछ बहुत सारे पुराने खेल है हमारे, जिसमें से मुख्य रूप से जो बच्चे हमारे खेलते हैं वो अधिकतर मिट्टी में ही खेले जाते हैं, किसी पीछे मैदान की जरूरत भी नहीं है। हमारे घर का आंगन होता है
1: जी जी।
2: जो गांव में होता है मैदान। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि सितोलिया है, तो सितोलिया हम खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते थे, हमने भी खेला है, तो अभी ये बहुत कम देखने को मिलता है।
1: जी बिल्कुल।
2: क्योंकि ये बहुत ही रोमांचित खेल था कि आप जो सितोलिया है, एक बच्चा है जो उसको गेंद से मारता है, गिरने के बाद बाकी जो टीम होती है वो टीम उसका चुनाव करती है।
1: जी जी।
2: तो अगर यहाँ के हम बात करें तो यहाँ पे टीम वर्क, अब हम बात करें शिष्टाचार की, तो बच्चे यहाँ पे टीम वर्क सीख रहे हैं।
1: जी जी।
2: क्योंकि सब मिलके उसको चुनने के पीछे वो सोच रखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: और वो सोच उनके अंदर विकसित होती है कि टीम कैसे काम करती है। तो ये बहुत बड़ा है कि बच्चे टीम वर्क सीख रहे हैं और उनके अंदर एक शिष्टाचार है वो पैदा हो रहा है
1: जी।
2: कि हमें एक टीम की तरह जो भावना होती है टीम की, वो कहीं ना कहीं शिष्टाचार से जुड़ी होती है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि सितोलिया एक ऐसा खेल है जो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरीके से जो बोल मारकर हमने पत्थरों को गिराया है उन्हें हमें कैसे टीम के सहयोग के साथ जमाना है, और साथ ही हमें किस तरीके से उस गेंद का प्रयोग करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत अधिक तेज से अगर हम वो गेंद मारते हैं तो किसी को चोट लगने की संभावना रहती है। तो बहुत ही सक्रियता से और धैर्य के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से बच्चे जो है वो बहुत सारे शिष्टाचार को सीख सकते हैं।
2: जी। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे लुका छिपी है, हम खेलते थे, अभी बहुत कम है जो गांवों में बच्चे खेलते हैं।
1: जी जी।
2: लेकिन पहले जैसा ट्रेड नहीं, अभी बहुत कम बच्चे खेलते हैं। इसमें अगर बात करें लुका छिपी की, तो एक व्यक्ति है जो वो बाहर जाएगा, बाकी बच्चे अपने आस पड़ोस में छिप जाते हैं, तो वो उसको ढूंढता है, तो सबसे पहले जो उसको ढूंढता है वो आउट होता है। इस तरह से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की जो भावनाएं हैं
1: जी जी,
2: वो आती है।
1: जी बिल्कुल।
2: साथ में आप देखोगे इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो भावना है वो भावना विकसित होती है एक तो सोच की।
1: जी बिल्कुल।
2: अगर रचनात्मक सोच कि बच्चा पहले सोचेगा खड़ा होके कि कहाँ कौन छिपा होगा
1: जी जी
2: ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं जो रचनात्मक सोच का जो विकास है, हम विकास भी इसको कह सकते हैं। दूसरा ये एक विषय है, शिष्टाचार भी है, क्योंकि हम क्रिटिकल अगर सोचते हैं, रचनात्मक तब सोचते हैं, तो कई विषय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो
1: सर,
2: उसके माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं।
1: जी जी।
2: इसी तरह आप देखोगे गिल्ली डंडा, हालांकि कई खेल ऐसे भी जो थोड़े रिस्क भी होती है, लेकिन बच्चे बड़े मजे से उसको प्लानिंग के साथ खेलते हैं। तो गिल्ली डंडा आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में खेलते हैं और हमारे क्षेत्र में भी काफी बच्चे खेलते हैं अभी भी, लेकिन उतना ज्यादा ट्रेड नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी सी जोखिम भी रहती है। लेकिन उसमें भी आप देखोगे तो उसके माध्यम से बच्चे हैं जो गिनना सीखते हैं कि कितनी दूर गई, तो उस डंडे से वो नापते हैं
1: जी बिल्कुल
2: कितने दूर गई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर चीज में सीखना, आपका शिष्टाचार, आपस में तालमेल बच्चों का
1: जी जी,
2: किस तरह से सामाजिक जो चेंजेस है वो आते हैं तालमेल से
1: जी जी।
2: तो तालमेल बच्चे सीखते हैं कि कहीं ज्यादा कम हो जाता तो आपस में समाधान कर लेते हैं कि चलो दो नहीं था एक था, तो उस तरह की जो भावना है वो विकसित होती है। दूसरा हमारे जैसे परंपरागत है आपने सली खेल, सली में क्या होता है कि एक डंडा होता है उसको मिट्टी में छिपा दिया जाता है
1: जी बिल्कुल,
2: और उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक बार हाथ देना होता है, अगर वो मिल जाता है तो वो उसको पॉइंट मिलते हैं और वो आउट नहीं होता है
1: जी जी।
2: अगर वो एक वन टाइम में उसको नहीं निकाल पाता है तो फिर वो क्या होता है कि वो आउट हो जाता है
1: जी,
2: तो उसकी बारी समाप्त हो चुकी है, अब दूसरे की बारी आएगी। इसमें बच्चे जो है आपसी तालमेल के साथ में वो सोच रखते हैं कि कहाँ वो हो सकता है, तो एक सटीक जो निशाना है, सटीक जो जानकारी है
1: जी जी,
2: उसको ढूंढने में वो सक्षम हो पाते हैं और उस सोचते हैं कि किस तरह से कहाँ पे वो हो सकता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो इससे जीवन में आने वाले बच्चों के ये आइडियाज है जो पूरे जीवन में उनके काम आते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से ये जो सारे खेल है वो कहीं ना कहीं शिष्टाचार से जुड़े हुए हैं, इनमें हर खेल में शिष्टाचार छिपा है। जैसे आप जैसे गोटी खेल होता है तो उसमें हम एक जो मिट्टी पे एक बना लेते हैं उसमें 9 गोटियां होती है, उनके माध्यम से वो बच्चे खेलते आपस में
1: जी जी,
2: तो उसको जैसे उसको मारना, एक गोटी कम हो गई वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा की भावना और बच्चों में जीतने का जुनून है वो पैदा होता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये कहीं ना कहीं जीवन भर जीतने का जुनून है वो आगे भी काम देता है
1: जी जी।
2: इसी तरह आपको बताऊं जैसे हमारे यहाँ खेल कंकड़, तो ज्यादातर हमारी बालिकाएं खेलती है, वो 5 कंकड़ लेती है
1: जी जी,
2: उसको उछालती है फिर नीचे वाले कंकड़ हाथ में लेती है। तो इस तरह से वो जो ध्यान केंद्रित वाला जो बात हम करते हैं
1: जी बिल्कुल,
2: कि किसी विषय को कैसे ध्यान से देखा जाए और कैसे ध्यान से उसके साथ खेला जाए
1: जी बिल्कुल,
2: तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके जीवन भर के लिए शिष्टाचार जो है वो पैदा होगा, क्योंकि आप ध्यान केंद्रित के साथ आप जो काम कर रहे हैं
1: जी जी,
2: वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाता है
1: जी बिल्कुल।
2: क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में ऐसे वक्त आता है कि आप ध्यान केंद्रित नहीं होगा किसी काम को लेकर, तो परिणाम मुझे लगता है कि कभी मुश्किल से सफलता तमक आ सकते हैं, बाकी असफल का ज्यादा चांसेस रहते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये बच्चों से जुड़ा हुआ है जो जीवन भर काम देता है। इसके साथ ही आप देखोगे तो दूसरा खेल है इमली गुट्टी है, जैसे इमली होती है ना हमारी, तो उसके जो दाने होते हैं उसको बीच में से बच्चे चीर देते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: और जैसे लूडो हम जैसे खेलते हैं
1: जी जी,
2: उसी तरह से होता है वो, तो 4 दाने चीर देते हैं और फिर वो लोग उसको घुमा के खेलते हैं और नीचे एक फ्रेम बनाते हैं खेल
1: जी जी बिल्कुल,
2: उस फ्रेम के माध्यम से खेलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे गिन रहे हैं, सीख रहे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से वो कर रहे हैं, वो उत्साह एक दूसरे का बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जीवन में भी हमारे जो काफी काम आता है। तो ये जो सारे खेल है ये हमारे जीवन में काफी काम आते हैं और इससे शिष्टाचार के साथ साथ में सीखना, बच्चों का विकास, अगर छोटे बच्चे इस तरह के खेल खेलते हैं तो उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषा, रचनात्मक विकास, जो 5 कंपोनेंट है, जो 5 आयाम है, उनमें काफी है जो सुधार होता है
1: जी बिल्कुल। सर आपने सही कहा, तो जैसा कि आप बहुत अच्छे परंपरागत खेल हैं जो अभी के समय में हम भूलते जा रहे हैं, उनको लेकर ढेर सारी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवा रहे हैं, तो सर ऐसे और कौन कौन से अन्य खेल हैं जो भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिससे वो शिष्टाचार, विकास और बहुत सारी चीजों को सीख सकते
2: जी,
1: हैं।
2: तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं तो हमारे पास में जैसे कंचे हैं, तो कंचे हम लोग पुराने जमाने से खेलते हैं हमारे बच्चे, और वो कंचे आजकल बहुत मुश्किल से गाँव में उपलब्ध हो पाते हैं
1: जी जी बिल्कुल,
2: लेकिन एक काफी रोमांचित खेल था और इसको वापस से लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे में बहुत ही, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है या आप डे हो जाता है
1: जी जी बिल्कुल,
2: तो आजकल बच्चे क्या है आपस में ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, लेकिन एक अच्छा माध्यम है कि उनको समय बिताए वो खेल के माध्यम से, मिट्टी के साथ वो खेलें
1: जी जी।
2: तो कंचे में बच्चे गिनना सीखना, क्योंकि आप मारोगे तो कितने कंचे बाहर आए
1: जी बिल्कुल,
2: तो वो आपके होंगे, उसमें जीत की जो भावनाएं होती है वो काफी छिपे रहती है, जो भी ज्यादा कंचे उसके आएंगे वो जीतेगा, तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये खेल काफी भावना से जुड़ा हुआ है और ये भावनाएं एक दूसरे के प्रति बच्चे के कि चलो मेरी बारी आ गई, मेरे पास इतने हैं, आपकी चलो आपकी बारी है, तो इस तरह से बच्चे आपस में जो कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: साथ में गीड़ा खेल होता है जो आपने सुना होगा कि हमारे 8-9 बच्चे होते हैं, वो ग्रुप में एक मिट्टी का जो ढेला बना के उस पे एक डंडा लेके खड़े होते हैं और एक सदस्य होता है जो एक कपड़े की गेंद होती है तो उनको मारते हैं और सामने से उसको प्ले करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है ध्यान केंद्रित के साथ कि कब गेंद आई, अगर टच हो गया तो आउट हो जाएगा, तो जीतने के साथ वो ध्यान केंद्रित जो बात है वो बच्चों को कहीं ना कहीं वहां से निकल कर आती है।
1: जी बिल्कुल।
2: और हमेशा वो जीवन भर वो चीजें काम देती है।
1: जी हाँ।
2: इसी तरह बहुत सारे खेल और भी है हमारे, आप देखो कबड्डी हमारे पुराने जमाने से खेलते हैं और कबड्डी आज भी गांव में प्रचलित है और अधिकतर बच्चे जो मिल जाएंगे आपको।
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये सारे जो खेल है ये

0: एकदम बच्चों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, हमारी समुदाय की संस्कृति और हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है
1: जी बिल्कुल।
0: और हर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खेल है उनको खेलने से बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ का आपके बच्चे सिर्फ खेल ही नहीं खेल रहे हैं
1: जी बिल्कुल,
0: वो उनकी भावनाओं से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, आपकी कई प्रकार की कौशल है वो विकसित हो रहे हैं
1: जी बिल्कुल,
0: और शिष्टाचार आपस में मिलकर किस तरह से रहा जाए और किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करें, इन सारी चीजों पे वो बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं जो कि आगे जाके उनके जीवन में काम आती है। तो इन सभी को हमें पुनः स्थापित करें, जहाँ पे बच्चे अभी भी खेल खेलते वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं खेलते तो जो समुदाय है वो बच्चों को प्रेरित करे ताकि इन खेलों की ओर वापस ध्यान आकर्षित हो सके
1: जी बिल्कुल। सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवा दिया है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया
0: जी, धन्यवाद।
1: साथियों जैसा कि अभी हमारे बीच में मांगीलाल जी सर जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो परंपरागत खेल हैं उनसे अवगत करवाया है, और साथ ही हम उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वो जो परंपरागत खेल हैं वो बच्चों को शिष्टाचार सिखाते हैं
2: हाँ।
1: और साथ ही उन खेलों के माध्यम से बच्चों का विकास भी बहुत अच्छे से होता है
2: बिल्कुल।
1: इसी के साथ हम देख रहे हैं कि अभी के समय में ये परंपरागत खेल हमसे बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं
2: जी बिल्कुल।
1: हमारी जो पूरी निर्भरता है वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उन पर निर्भर होती जा रही है, तो ऐसे में हम हमारे जो माता पिता हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम हमारे बच्चों को फिर से इन परंपरागत खेलों से जोड़ें ताकि वो उनके विकास के साथ साथ अच्छे शिष्टाचार को इन खेलों के माध्यम से सीख पाए
2: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत सुनवा दें हम
1: जी बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए। इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है खेल के महत्व को लेकर। श्रोता साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनकी ऊर्जा उत्साह और रचनात्मकता ही देश के भविष्य को दिशा देती है।
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ।
1: कशिश, यदि यही ऊर्जा सही दिशा में न लगे तो वो शक्ति कमजोर पड़ सकती है। खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: बिल्कुल,
1: खेल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास का आधार है।
0: जी हाँ।
1: आज के डिजिटल युग में जब युवा मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में अधिक समय बिताने लगे तब खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: खेल शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और जीवन को संतुलित बनाते हैं।
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: शोधों में पाया भी गया है श्रोता साथियों कि नियमित खेल कूद युवाओं की शारीरिक क्षमता, एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं खेल के महत्व को लेकर। जैसा कि जागरूक

0: दोस्ती जी, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।
1: बिल्कुल,
0: यह कहावत केवल एक वाक्य नहीं है साथियों, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य भी है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में जहां तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम और सोशल मीडिया ने हमारे युवाओं के जीवन में अपनी जगह बना ली है, जिसके कारण खेलकूद से दूरी उनकी बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में खेलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ये जीवन को स्वस्थ सफल बनाने का एक माध्यम है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन की कोई भी उपलब्धि पूर्ण सुख नहीं दे सकती।
0: बिल्कुल,
1: खेल शरीर को मजबूत, फुर्तीला और ऊर्जावान बनाते हैं। नियमित खेल से मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डियां सुदृढ़ होती है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
0: जी हाँ,
1: खेल मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं के खतरों को भी कम करता है। हम कह सकते हैं कि युवा अवस्था में शरीर तेजी से विकसित होता है। यदि इस समय खेलों को जीवन का हिस्सा बनाया जाए श्रोताओं, तो व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, तैराकी और योग जैसे खेल युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है साथियों। इसी समय व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और भविष्य की नींव रखी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में खेल इस नींव को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर देखा जाए तो खेल शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: नियमित खेल कूद से साथियों शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डियां सुदृढ़ होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: देख सकते हैं जागृति जी कि खेलों के माध्यम से युवा साथियों का मोटापा नियंत्रित में रहता है, हृदय उनका स्वस्थ रहता है, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है और रक्त संचार भी बेहतर होता है।
1: जी हाँ,
0: देख सकते हैं कि आज अनेक युवा घंटों मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, जिससे श्रोता साथियों कई ढेर सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में खेल इस समस्या का प्रभावी समाधान हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि खेल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाते हैं। पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंताओं के कारण आज कई युवा तनाव और चिंता का सामना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेल तनाव को कम करने का प्रभावी माध्यम है। खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक विचारों में कमी आती है।
0: जी
1: हम
0: हाँ।
1: देखते हैं कि खेल युवाओं को हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं। जब कोई खिलाड़ी हारता है तो वो दोबारा मेहनत करना सीखता है।
0: बिल्कुल,
1: और जब वो जीतता है तो विनम्रता का महत्व समझता है। यही गुण जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिलाते हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम कर रहे हैं कि उनके जीवन में खेल का क्या महत्व है, और साथ ही ढेर सारी बातें जैसा कि हम जान भी पाए हैं कि जो खेल है वो शारीरिक स्वास्थ्य का आधार होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आगे ये बातें हमारी ऐसे ही और भी जरूर जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातें चल रही थी खेल के महत्व को लेकर। तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। कोई भी खिलाड़ी बिना अनुशासन के महान नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल,
0: खेल युवाओं को समय का महत्व, नियमों का पालन और जिम्मेदारी निभाना सिखाते हैं। जो युवा नियमित अभ्यास करते हैं, समय पर मैदान में पहुंचते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, वे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेल ये सिखाते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से प्राप्त होती है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अनुशासन का जो करे सम्मान, सफलता उसके कदम चुनती है।
1: बिल्कुल,
0: तो जीवन में अकेले सफलता प्राप्त करना कठिन होता है, हर व्यक्ति को सहयोग और साथ की आवश्यकता होती है। खेल युवाओं को टीम भावना का पाठ पढ़ाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो खेल केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि खेलते समय शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो तनाव और चिंता को कम करते हैं। इससे साथियों हमारा मन प्रसन्न रहता है और जो व्यक्ति है वो सकारात्मक सोच भी विकसित कर पाता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, जहां आज परीक्षा, प्रतियोगिता और करियर की चुनौतियों के कारण युवा साथी तनाव का सामना कर रहे हैं, ऐसे में खेल उनके मानसिक संतुलन बनाए रखने में उनकी सहायता कर सकता है। साथ ही ये आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इससे उसका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: हम देख सकते हैं कि खेल युवाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसे में आत्मविश्वास जो है वो जीवन की सफलता की कुंजी है साथियों, और खेल इसे विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों में टीम का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है। खिलाड़ी सिखाते हैं कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण सामूहिक सफलता होती है।
1: बिल्कुल,
0: ये भावना भविष्य में उन्हें बेहतर नागरिक, कर्मचारी और नेता बनने में सहायता करती है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि हर समाज को अच्छे नेताओं की आवश्यकता होती है। खेल नेतृत्व के गुण विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। मैदान में कप्तान अपनी टीम का मार्गदर्शन करता है, कशिश निर्णय लेता है, कठिन परिस्थितियों में टीम का मनोबल बनाए रखता है।
1: जी जी।
0: खेलों से प्राप्त नेतृत्व क्षमता युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सहायता करती है। वे समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना और दूसरों को प्रेरित करना सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है कि खेल ही हमें नेतृत्व की पहचान करना सिखाते हैं, और जब हम नेतृत्व पहचान लेते हैं तभी युवा हमारे देश की शान बनते हैं।
1: बिल्कुल, अब यही बात करते हैं समय प्रबंधन सिखाने की। तो साथियों, खिलाड़ियों को पढ़ाई, अभ्यास और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे उनमें जागृति जी समय का सही उपयोग करने की आदत भी विकसित होती है। हम देखते हैं कि समय प्रबंधन एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है।
0: जी हाँ।
1: साथ ही दोस्तों, खेल जो है वो चरित्र निर्माण में भी सहायता करते हैं, यानी कि खेल व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि खेल ये सिखाते हैं कि ईमानदारी का गुण कैसा होता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे अंदर धैर्य, साहस, सहयोग और सम्मान जैसी जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा खिलाड़ी केवल मैदान में ही नहीं बल्कि जीवन में भी अच्छा इंसान बनने का प्रयास करता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जीवन में हमेशा जीत कभी नहीं मिलती, खेल हमें हार को स्वीकार करना और उससे सीखना भी सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई खिलाड़ी जागृति जी खेल में हारता है तो वह अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मेहनत करता है। और हम देखते हैं कि यही सीख जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक सम्मानजनक करियर भी बन चुका है। अनेक युवाओं के खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियां और आर्थिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं श्रोता साथी इस खेल के माध्यम से कि भारत में खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है, और कई राज्यों में खेल शिक्षा तथा खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: जी हाँ,
0: हाल के वर्षों में खेल संस्थानों और स्पोर्ट्स कॉलेजों में युवाओं की रुचि भी तेज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों यही कहना चाहेंगे कि खेल युवाओं के जीवन का अभिन्न अंग है। वे केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता की पाठशाला है।
1: जी हाँ,
0: युवा शक्ति को सही दिशा देते हैं और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिस युवा के हाथ में खेल का मैदान होता है कशिश, उसके जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सफलता का नया अध्याय खुलता है।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इसी बात की कि प्रत्येक युवा अपने दैनिक जीवन में खेलों को स्थान दे। पढ़ाई और करियर जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण स्वस्थ शरीर और संतुलित मन भी है। खेलों को अपना कर युवा न केवल अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें तो हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और हम जान पाए हैं कि किस प्रकार से हमारे युवा साथियों के लिए खेल के ढेर सारे महत्व हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ पहले मनोरंजन करें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में सिर्फ आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि युवा शक्ति जब खेलों से जुड़ती है, तब केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि मजबूत व्यक्तित्व, सशक्त समाज और महान राष्ट्र का निर्माण होता है। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: मैदान में बहाया गया पसीना जीवन की हर चुनौती को आसान बना देता है। इसलिए उठिए, खेलिए, सीखिए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में खेल के महत्व को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का
2: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है खेल से हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर। आज हम देखते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो बड़ी भागदौड़ भरी हो गई है।
0: जी हाँ,
1: हम सभी अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है।
0: जी हाँ,
1: कोई मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने हमारी शारीरिक गतिविधियों को काफी कम कर दिया है। ऐसे में खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि खेल हमारे शरीर, मन और जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं खेलों से हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि खेल मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार भोजन, पानी, स्वच्छ वायु हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार खेल भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में लोगों की जीवन शैली व्यस्त हो गई है, आरामदायक होती जा रही है। श्रोता साथियों, लोग घंटों तक मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इसके कारण हम अंजलि जी देखते हैं कि अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने लगती है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: ऐसे समय में खेल न केवल हमारे लिए मनोरंजन का साधन है साथियों, बल्कि स्वस्थ जीवन की कुंजी भी है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि खेल हमारे शरीर को भी सक्रिय बनाकर रखता है।
1: जी हाँ,
0: जब हम किसी खेल में भाग लेते हैं श्रोता साथियों, तो हमारे शरीर के लगभग सभी अंग कार्य करते हैं।
1: जी जी,
0: इससे हम देखते हैं कि शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और हमारी मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती हैं। साथ ही श्रोता साथियों, नियमित रूप से खेल खेलने वाले लोगों को मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप और हृदय जैसी समस्याएं होती हैं वो भी नहीं होती हैं। हम देखते हैं कि खेल हमारे शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को भी जलाने में मदद करते हैं और हमारे वजन को नियंत्रित रखते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि मनुष्य का शरीर सक्रिय रहने के लिए बना है। जब हम नियमित रूप से खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग जो हैं वो बेहतर ढंग से काम करते हैं। खेल केवल बच्चों के लिए ही नहीं मनीषा, बल्कि युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है। खेल हमें फिट रखते हैं, ऊर्जा देते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर भी नियमित शारीरिक गतिविधियों और खेलों को स्वस्थ जीवन की कुंजी मानते हैं।
0: जी हाँ,
1: यहीं अब बात आती है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलों के लाभ क्या क्या हैं। हम बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति अधिक सक्रिय महसूस करता है।
0: जी हाँ,
1: नियमित खेल कूद से शरीर में शक्ति, सहनशीलता का विकास होता है, जिससे दैनिक कार्य करने में थकान कम महसूस होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या लाभ होते हैं। यहीं अगर श्रोता साथियों को बताएं कि इससे मानसिक लाभ क्या प्राप्त होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हम देखते हैं कि खेल केवल शरीर को ही नहीं साथियों बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं। आज तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेल इन समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब व्यक्ति खेल खेलता है तो उसके शरीर से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो उसे खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं।
1: जी जी,
0: इससे हम देखते हैं कि तनाव कम होता है और हमारा मन है वो भी प्रसन्न रहता है।
1: बिल्कुल मनीषा, खेलों के दौरान शरीर में रक्त संचार तेज होता है, इससे हृदय मजबूत बनता है और बेहतर तरीके से काम करता है।
0: जी हाँ,
1: नियमित खेल कूद से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। श्रोता साथियों, आज मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। घंटों बैठकर काम करना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं।
0: जी हाँ,
1: शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को जलाने में मदद करते हैं, इससे वजन नियंत्रित रहता है और शरीर संतुलित बना रहता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि अनुशासन और समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो हम देखते हैं कि खेल व्यक्ति को अनुशासन सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए नियमित अभ्यास, समय पर उठना, संतुलित भोजन करना और नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही आदतें व्यक्ति के जीवन में अनुशासन लाती हैं। खेल समय के महत्व को समझाने में भी सहायता करता है। खिलाड़ी अपने अभ्यास, पढ़ाई और अन्य कार्यों के बीच संतुलन बनाना सीखता है। यही गुण श्रोता साथियों जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है।
1: जी जी मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें कर रहे हैं कि खेल किस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से आगे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही मनीषा बात करें कि खेल किस तरीके से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, आज तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और आर्थिक चिंताओं के कारण लोग मानसिक दबाव महसूस करते हैं।
1: जी हाँ।
0: खेल तनाव को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। खेलते समय मन का ध्यान समस्याओं से हटकर गतिविधियों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे मानसिक राहत मिलती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे मनीषा कि जब कोई खिलाड़ी नया कौशल सीखता है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: जी हाँ।
0: छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह जीवन की अन्य चुनौतियों का भी सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: खेलों में ध्यान, रणनीति और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इससे मस्तिष्क सक्रिय रहता है और एकाग्रता बढ़ती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए खेल अत्यधिक उपयोगी है। नियमित खेल की गतिविधियों से महिलाओं की शारीरिक फिटनेस भी बनी रहती है। हम देखते हैं कि खेलों से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं।

0: मोटापे जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा खेल महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उनके मानसिक तनाव को भी कम करता है। हम देखते हैं कि आज अनेक महिलाएं विभिन्न खेलों में देश और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। इससे हम देखते हैं कि दूसरी महिलाएं भी देखकर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित होती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। जैसा कि आप महिलाओं के लिए बता रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं के लिए भी खेल फायदेमंद होते हैं, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि नियमित खेल कूद से महिलाओं में मोटापा, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम कम किए जा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: साथ ही यह उन्हें अधिक ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। मनीषा, कह सकते हैं श्रोता साथियों से कि यह धारणा गलत है कि खेल केवल युवाओं के लिए होते हैं। बुजुर्ग लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार पैदल चलना, योग, हल्की व्यायाम, बैडमिंटन और अन्य सरल गतिविधियां कर सकते हैं। इससे उनका शरीर सक्रिय रहता है, जोड़ों की जकड़न कम होती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। खेल टीम भावना सिखाते हैं। खेलते समय हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। इससे आपसी सहयोग, भाईचारा और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: खेल जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को कम करके लोगों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमें रोजाना कम से कम 30 मिनट खेल या शारीरिक गतिविधियां करनी है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को मोबाइल से अधिक मैदान की ओर प्रेरित करना है। स्कूलों और गांवों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना है। महिलाओं और लड़कियों को भी खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्वास्थ्य निवेश समझना है, क्योंकि खेल केवल समय बिताने का साधन नहीं होते हैं मनीषा, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में खेलों को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों में खेल गतिविधियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
1: जी जी।
0: गांव और शहरों में खेल के मैदान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों को पढ़ाई तक सीमित नहीं रखकर उन्हें खेलों के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं अंजलि जी कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वे हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। खेल न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं श्रोता साथियों, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व जैसे गुण भी हमारे अंदर विकसित करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में खेलों को स्थान देना चाहिए।
1: जी।
0: यदि श्रोता साथियों हम नियमित रूप से खेलों में भाग ली तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं वो भी हल होने लगेंगी और हम सुख और सफल और संतुलित जीवन जी सकेंगे।
1: बिल्कुल मनीषा, एक मैदान में खेला गया एक घंटा हमें कई बीमारियों से बचा सकता है, मन को प्रसन्न रख सकता है और जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। खेल हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल जीतने का नाम नहीं बल्कि प्रयास करते रहने का नाम है। वे हमें गिरकर उठना, हार कर सीखना और आगे बढ़ना सिखाते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम अपने परिवार, बच्चों और समाज को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन ही एक मजबूत समाज का निर्माण करता है।
0: हाँ।
1: इसलिए हम सभी को संकल्प लेना है कि हम स्वयं भी खेलेंगे, दूसरों को भी खेलने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वास्थ्य से भरपूर, ऊर्जावान तथा जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से खेलों से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत और गीत संगीत आपको अवश्य पसंद आए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को
1: नमस्कार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर, जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ रहता है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान देता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत जरूरी भी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में जो मेरी आपसे बातें रहेगी उसे आप ध्यान से सुनिएगा साथियों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धैर्य और मेहनत के रिश्ते को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें धैर्य की कमी होती है, जिसके कारण वो मेहनत करते भी हैं तो भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं ढेर सारी बातें इस विषय को लेकर आपसे करूंगी और गीत संगीत भी कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारे होंगे साथियों। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए दोस्तों पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर हम अपने विषय की ओर फिर से बढ़ेंगे।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सपनों की उड़ान कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों आज का विषय मैं आपको गीत से पहले बता चुकी हूँ कि हम बात कर रहे हैं धैर्य और मेहनत के रिश्ते को लेकर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन संघर्ष, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है साथियों, तो कोई शिक्षक, साथ ही कोई कलाकार भी बनना चाहता है, तो कोई किसान होकर भी नई मिसाल कायम करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, केवल सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती है। सपनों को साकार करने के लिए दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो जरूरी होते हैं, और वो है धैर्य और मेहनत। साथियों, ये दोनों ऐसे साथी हैं जो जीवन की हर कठिन राह में हमारा साथ देते हैं और उस कठिन राह को आसान भी बना देते हैं। यदि मेहनत जीवन की गाड़ी का पहिया है साथियों, तो धैर्य उसका संतुलन है। मेहनत बिना धैर्य के अधूरी है, और ठीक उसी प्रकार धैर्य बिना मेहनत के अधूरा है। हम देखते हैं कि आज के समय में लोग जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों में उनके पास नाम, पैसा और सम्मान सारी चीजें आ जाएं। लेकिन जैसा कि हम प्रकृति का नियम तो जानते ही हैं कि हर अच्छी चीज समय लेकर ही तैयार होती है। बीज बोने के बाद किसान तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता साथियों, ठीक उसी तरह हमें भी सफलता की चाह रखनी है, लेकिन उसका लालच नहीं करना है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो किसान होता है वह धैर्य रखता है, खेत को सींचता है, मेहनत करता है, और समय आने पर फसल अपने आप ही तैयार हो जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है दोस्तों, कि हर अच्छी चीज हमें सही समय पर ही मिलेगी। इसी के साथ अगर बात करूं धैर्य की, तो श्रोता साथियों, धैर्य का मतलब चुपचाप इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, हार न मानना और विश्वास बनाए रखना। क्योंकि दोस्तों, जब जीवन में समस्याएं आती है ना, तो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि तू तो बार बार असफल हो जाता है। तो श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताएं हमारे सामने जरूर आएंगी, लेकिन हमें उस वक्त टूटना नहीं है, बल्कि हमें शांत मन से आगे बढ़ते रहना है, और वही हमारा धैर्य है, और वहीं से हम धैर्यवान कहलाने लगेंगे। हम देखते हैं कि धैर्य का गुण हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख की प्रक्रिया बनी ही रहती है साथियों। इसलिए हमें कभी भी अपनी कठिन

परिस्थितियों से घबराना नहीं है बल्कि उसे चुनौती देकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मनुष्य जीवन ही संघर्षमय जीवन कहलाता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारा जीवन सीधा साधा होता, हमें जो चीज चाहिए वो हमें फटाफट से मिल जाती, तो जीवन को जीने का मजा हमें नहीं आता साथियों। इसलिए थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ा थोड़ा अनुभव, थोड़ी थोड़ी समस्याएं और थोड़ा थोड़ा हल, साथ ही थोड़ा थोड़ा सुख भी हमें हमारे जीवन में मिला है, जिसके कारण हम उसका मजा ले सकें। तो इस तरीके से दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है। ये बातें मैं आगे भी करूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत का विषय बहुत अच्छा चल रहा है, कार्यक्रम के माध्यम से धैर्य और मेहनत के रिश्ते को लेकर हम बात कर रहे हैं, और गीत से पहले हम धैर्य के वास्तविक अर्थ को जान पाए थे। हमने जाना था श्रोता साथियों कि धैर्य जो होता है वो हमें बहुत कुछ नया सिखाता है। धैर्य हमें ये बताता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने भीतर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो धैर्य नहीं रखेगा तो वह जल्दबाजी में निर्णय लेगा, और जल्दबाजी में निर्णय लेने से श्रोता साथियों हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण हम कठिनाइयों में पड़ जाते हैं और फिर हमें सफलता मिलती है और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, धैर्य रखने से हम सही निर्णय भी ले पाएंगे और अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर पाएंगे। तो जैसा कि गीत से पहले धैर्य के बारे में तो बात हो चुकी थी, यही बात करते हैं मेहनत के बारे में। साथियों, मेहनत जो होती है वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति श्रोता साथियों मेहनत के नाम पर ही सफल हुआ है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मेहनत के अपनी सफलता तक पहुंच गया हो। इसलिए मेहनत वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। दोस्तों, अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं तो एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता रहता है, तब जाकर वह परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, वहीं एक खिलाड़ी वर्षों तक अपने क्षेत्र में अभ्यास करता रहता है, तब जाकर वह कोई पदक जीतता है। वहीं एक किसान साथियों तपती धूप में खेत में काम करता रहता है, तब जाकर अनाज पैदा हो पाता है। हम कह सकते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है श्रोता साथियों। इसलिए धैर्य और मेहनत जैसे जो गुण है वो हर व्यक्ति के जीवन में होने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों धैर्य और मेहनत एक दूसरे के पूरक है। यदि मेहनत की जाए लेकिन धैर्य न हो तो इंसान जल्दी निराश हो जाता है, और यदि धैर्य हो श्रोता साथियों लेकिन मेहनत न की जाए तो सपने केवल कल्पना बनकर ही रह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई युवक है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। साथियों, वह कुछ महीनों तक तो मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। यदि उसके पास धैर्य नहीं होगा तो वह तैयारी छोड़ देगा, लेकिन यदि उसके पास धैर्य है श्रोता साथियों तो अपनी गलतियों से सीखेगा, सुधारेगा और फिर से लगातार मेहनत करना शुरू करेगा, तो एक न एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों कि जीवन में केवल काम करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही समय पर टिके रहना भी बहुत जरूरी होता है। हम देख सकते हैं कि धैर्य और मेहनत का गुण जो है उसे सिखाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण प्रकृति का है। जैसे कि प्रकृति जो है वो हमें धैर्य और मेहनत का सुंदर संदेश देती है। जैसे कि बीज से वृक्ष बनने तक का उदाहरण, दोस्तों एक छोटा सा बीज जो होता है वो मिट्टी में दबाया जाता है, वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे पानी, धूप और समय चाहिए होता है। धीरे धीरे वह अंकुर बन जाता है और फिर पौधा और फिर अंत में विशाल वृक्ष। यदि श्रोता साथियों प्रकृति भी धैर्य रखती है तो मनुष्य को भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार नदी रास्ते में आने वाली चट्टानों से नहीं डरती, वह लगातार बहती रहती है और अंत में अपना मार्ग बना ही लेती है। श्रोताओं, यह हमें ये सिखाता है कि निरंतर मेहनत और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर सूर्य का उदाहरण देखें श्रोता साथियों, तो सूर्य रोज धीरे धीरे उगता है, वह कभी जल्दबाजी नहीं करता लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। इसी प्रकार दोस्तों, धीरे धीरे की गई मेहनत भी हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हम कह सकते हैं कि आज के हमारे युवा साथी जो हैं, वो जल्दी सफलता पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया, चमक दमक की दुनिया देखकर दोस्तों कई बार हम अधीर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि दूसरों को बहुत चीजें जल्दी मिल जाती है और मुझे क्यों नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है, तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है और असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर बनती है। श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि असफलता हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता श्रोता साथियों, उसे शायद कभी नया प्रयास ही नहीं मिलता करने को। कई लोग पहली हार के बाद भी टूट जाते हैं, लेकिन महान लोग असफलता को कभी अंत नहीं मानते, उससे सीखते हैं और फिर दुगुनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारे सामने ऐसे कई महान व्यक्तियों के उदाहरण हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने श्रोता साथियों कई असफलताओं का सामना किया लेकिन धैर्य और मेहनत कभी नहीं छोड़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वे भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। वहीं किसान और मजदूर भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे कि हमारे समाज में दोस्तों, किसान और मजदूर सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं,
कठिन परिस्थितियों में भी वे लगातार मेहनत करते रहते हैं, धैर्य के साथ जीवन चलाते हैं और उनका जो जीवन है वो हमें ये सिखाता है कि मेहनत और धैर्य ही वास्तविक ताकत होती है। ऐसे में श्रोता साथियों, आपको भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत के गुण को अपनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य और मेहनत जीवन के दो ऐसे दीपक हैं जो अंधकार भरे रास्ते को भी रोशन कर देते हैं। दोस्तों, धैर्य हमें टूटने नहीं देता और मेहनत हमें कभी रुकने नहीं देती। ये दोनों ही मिलकर दोस्तों साधारण व्यक्ति को भी असाधारण सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी सफलता पाने की दौड़ को छोड़कर हम दोस्तों नियमित रूप से प्रयास करना शुरू कर दें। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आलोचना भी करेंगे, कई बार तो दोस्तों आपको असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ मेहनत करता है वही अंत में जीतता है। याद रखिए दोस्तों, फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी और आपके सपनों को एक नई उड़ान देगी। साथियों, तो ये थी आज के हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी कुछ आपसे महत्वपूर्ण बातें। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी जी
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो आज के दिन यानी 11 जून को मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है श्रोता साथियों कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों के शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास का महत्वपूर्ण आधार है।
0: बिल्कुल,
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कशिश बच्चों का बचपन मोबाइल टीवी इंटरनेट की स्क्रीन के बीच सिमटता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में खेलों का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। खेल बच्चों को खुलकर जीना सिखाते हैं, दुनिया को समझना सिखाते हैं। खेल बच्चों की पहली पाठशाला है। जब कोई बच्चा दौड़ता है, कूदता है, टीम बनाकर खेलता है या किसी खेल में नियमों का पालन करता है, तब वह अनजाने में जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीख रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: खेलों से सहयोग, अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व और सम्मान की भावना सिखाता है।
0: जी हाँ दिलीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी महत्वपूर्ण दिवस को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हम पहले सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं अंजलि जी, कि हम सभी के जीवन में खेलों का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि ये स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन और बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण का भी आधार होते हैं। देखते हैं कि वर्तमान समय में तकनीक और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के कारण कई बच्चों और युवाओं की खेलों में रुचि कम होती दिखाई दे रही है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में खेलों के महत्व को समझने और लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। जब कोई बच्चा पहली बार गेंद पकड़ता है, दौड़ता है, कूदता है या अपने दोस्तों के साथ कोई खेल खेलता है, तब वह केवल खेल नहीं रहा होता बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीख रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: खेल बच्चों को नियमों का पालन करना सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि हर काम के कुछ नियम होते हैं और सफलता उन्हीं को मिलती है जो उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि खेल बच्चों में अनुशासन, धीरे, जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेल यह भी सिखाते हैं कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है, कभी हार भी मिल सकती है और हार से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है।
0: बिल्कुल,
1: यह सीख जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। आज बच्चों में मोटापा, आंखों की समस्या, कमजोरी और शारीरिक निष्क्रियता जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसका एक बड़ा कारण खेलों से दूरी बनना है। खेल शरीर को सक्रिय रखते हैं। दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, तैरना या किसी भी प्रकार का खेल शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ,
1: खेल हृदय को स्वस्थ रखते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि जो बच्चे नियमित रूप से खेलते हैं वे सामान्यतः अधिक स्वस्थ, फुर्तीले और आत्मविश्वासी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी है। खेलों के माध्यम से व्यक्ति अनुशासन, सहयोग, धैर्य, नेतृत्व और आत्मविश्वास जैसे गुण सीखता है। इसलिए खेलों को शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास को लेकर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2024 में अंजलि जी एक प्रस्ताव पारित किया था कि 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इस दिवस का उद्देश्य दोस्तों देखते हैं कि बच्चों के खेल अधिकारों को बढ़ावा देना था और समाज में भी खेलों के महत्व को के प्रति लोगों को जागरूक करना था।
1: बिल्कुल,
0: देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यह माना था कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही खेल जो है वो बच्चों को सीखने, समझने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। आज मानसिक तनाव केवल बड़ों तक सीमित नहीं रहा है, बच्चे भी पढ़ाई, प्रतियोगिता और सामाजिक दबाव के कारण तनाव महसूस करने लगे हैं।
0: जी जी,
1: खेल बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। खेलते समय कशिश बच्चों का मन प्रसन्न रहता है, तनाव कम होता है, बच्चों को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगने का अवसर भी मिलता है। खेल बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब वे कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं या किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं श्रोता साथियों, तो उन्हें अपनी सफलता और अपनी क्षमता पर विश्वास होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत से लोगों का मानना है कशिश कि खेल केवल शारीरिक गतिविधि है, लेकिन वास्तव में खेल बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाता है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चे नए खेल बनाते हैं, नई रणनीति सोचते हैं या किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तब उनका दिमाग सक्रिय रूप से काम कर रहा होता है।
0: जी हाँ,
1: और यही रचनात्मकता आगे चलकर शिक्षा, विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों में सफलता का आधार बनती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है और हम कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर बातचीत कर रहे हैं और खेलों के महत्व को लेकर भी जान रहे हैं।
1: जी जी,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे थे कि खेलों का किस तरीके से हमारे जीवन में महत्व है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बहुत से लोग मानते हैं कि खेल केवल शारीरिक गतिविधि ही है, लेकिन खेल बच्चों को समाज में रहना सिखाते हैं, वे मित्र बनाना सीखते हैं, दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं और मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। टीम खेलों में बच्चे सहयोग, नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। वे समझते हैं कशिश के अकेले ही सफलता से अधिक है कि महत्वपूर्ण ये रहेगा कि टीम की सफलता होती है।
1: बिल्कुल,
0: यही गुण आगे चलकर उन्हें एक अच्छा नागरिक और जिम्मेदार इंसान बनाता है।
1: जी
0: कहना
1: हाँ।
0: चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे गांवों में पारंपरिक खेलों की एक समृद्ध परंपरा रही है। कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, रस्साकसी, कुश्ती, लंगड़ी दौड़ जैसे खेल पीढ़ियों से खेलते आ रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: इन खेलों की सबसे बड़ी विशेषता कशिश यही है कि इनमें बहुत अधिक खर्च नहीं होता। कम संसाधनों में भी बच्चे और युवा इन खेलों का आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जरूरत है कि हम इन पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करें और नई पीढ़ियों को उनसे जोड़ें।
1: जी हाँ दिलीप जी, हम देखते हैं कि खेल जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से साथियों मजबूत बनाते हैं और खेलों के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचानता है और उन्हें विकसित करना जानता है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, अगर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभ को लेकर बात करें तो खेल शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं। नियमित खेल गतिविधियों से मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है।
0: जी जी।
1: और इससे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। साथ ही खेल मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी जो समस्याएं हैं उनको कम करने में भी कई हद तक सहायता करते हैं।
0: जी हाँ कशिश, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि तकनीक और आधुनिक जीवन का हिस्सा है खेल, इससे पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब तकनीक बच्चों के जीवन में खेलों की जगह ले लेती है।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और वीडियो गेम सीमित समय तक मनोरंजन दे सकते हैं श्रोता साथियों, लेकिन वे खुले मैदानों में खेलने का विकल्प नहीं बन सकते। वास्तविक खेल बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित करते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को स्क्रीन और मैदान के बीच के संतुलन को बनाना सिखाएं।
1: बिल्कुल,
0: ताकि बच्चे जो हैं वो नई तकनीकी के साथ साथ हमारे जो परंपरागत खेल हैं उनको भी लेकर जानकारी रखें। खेलों को बढ़ावा देने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कशिश। यदि माता पिता स्वयं खेलों के महत्व को समझेंगे और उन्हें महत्व देंगे तो बच्चे भी खेल के प्रति आकर्षित होंगे। बच्चों को खेलने के लिए समय देना, उनकी रुचि को प्रोत्साहित करना और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: कई बार माता पिता केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और खेलों को समय की बर्बादी समझते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यह सोच बदलने की आवश्यकता है क्योंकि पढ़ाई और खेल दोनों मिलकर बच्चों का संतुलित विकास कर पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, देखते हैं कि खेल हमें जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व समझाते हैं। नियमित अभ्यास, समय पर कार्य और लक्ष्य प्राप्ति की आदत दोस्तों खेलों से ही विकसित होती है।
0: जी जी।
1: अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चों के लिए खेल शिक्षा जितने ही जरूरी होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां भी करवाते रहें।
0: जी जी।
1: क्योंकि खेलों के माध्यम से बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करते हैं और समस्याओं का समाधान करना स्वयं जानते हैं।
0: जी जी कशिश, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य, अनुशासन, प्रसन्नता का बहुत बड़ा महत्व है। यदि शरीर स्वस्थ हो और मन प्रसन्न हो तो श्रोता साथियों जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कशिश, केवल खेल जो है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास का आधार भी है।
1: जी जी।
0: यही कारण है कि खेलों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आज के आधुनिक युग में जहां लोगों का अधिकांश समय मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बीत रहा है, वहां खेलों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: बिल्कुल।
0: खेल हमें सक्रिय बनाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन में उत्साह भरते हैं।
1: जी जी।
0: चाहे बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, खेल जो है वो हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए लाभदायक है।
1: जी हाँ अंजलि,
0: खेल ऐसी गतिविधि है कशिश, जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ खेल व्यक्तिगत होते हैं, जैसे कि दौड़, तैराकी, शतरंज, जबकि कुछ खेल सामूहिक होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और खो खो। खेलों का उद्देश्य केवल जीत हासिल करना नहीं होता श्रोता साथियों, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना, सीखना, स्वस्थ रहना भी होता है। खेल हमें प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग और सम्मान का महत्व भी सिखाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर युवाओं के लिए खेल के महत्व को हम जाने तो युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: खेल युवाओं को स्वास्थ्य, ऊर्जावान और सकारात्मक बनने में मदद करते हैं। दोस्तों, खेलों से ही युवाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और आत्मविश्वास का विकास होता है।
0: बिल्कुल।
1: हम देख सकते हैं कि खेल युवाओं को नशे और अन्य बुरी आदतों से दूर रखने में मदद करते हैं। जो युवा अंजलि जी खेलों से जुड़े रहते हैं, वे अधिक अनुशासित और लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित भी होते हैं।
0: जी हाँ कशिश, स्वस्थ शरीर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। खेल शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है।
1: जी हाँ।
0: नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों का विकास बेहतर होता है और शरीर में लचीलापन बढ़ता है। खेल रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और हृदय को स्वस्थ रखते हैं। आज मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है। खेल इन बीमारियों के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से खेलता है, उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है और वह दैनिक कार्यों को अधिक ऊर्जा के साथ कर पाता है।
1: जी हाँ, इसके
0: साथ कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन भी आवश्यक है। आज तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्या समाज में तेजी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: खेल मानसिक तनाव को कम करने का प्रभावी माध्यम है। खेलते समय व्यक्ति का ध्यान समस्याओं से हटकर गतिविधियों पर केंद्रित होता है कशिश।
1: बिल्कुल।
0: इससे मन हल्का महसूस करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
1: जी हाँ।
0: खेल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब कोई खिलाड़ी कठिन अभ्यास के बाद सफलता प्राप्त करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है।
1: बिल्कुल।
0: और यही आत्मविश्वास जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने में सहायक होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे भी होंगी, लेकिन अभी सुनाते हैं यहाँ पर दोस्तों को एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: तो अंजलि जी, जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया था कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि खेल पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जबकि दोस्तों ये वास्तविक सत्य नहीं है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो खेल विद्यार्थियों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं और नियमित गतिविधियां विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सक्रिय भी रखती है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे उनकी पढ़ाई में सुधार भी होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है।
1: जी हाँ,
0: विद्यालयों में खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों का समग्र विकास किया जा सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। वे केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सफल और संतुलित जीवन की आधारशिला है।
0: बिल्कुल,
1: खेल शरीर को शक्ति, मन को शांति, विचारों को सकारात्मक और व्यक्तित्व को निखार प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ,
1: वे हमें संघर्ष करना, अनुशासन में रहना, टीम भावना विकसित करना और हार जीत को समान रूप से स्वीकार करना सिखाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम खेलों को केवल प्रतियोगिता या समय बिताने का साधन न समझें, बल्कि जीवन के विकास और समाज के निर्माण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखें।
0: जी जी।
1: प्रत्येक परिवार, विद्यालय और समुदाय को खेलों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बन सके।
0: बिल्कुल।
1: जिस समाज में खेलों को सम्मान मिलता है वह समाज अधिक स्वस्थ, अधिक जागरूक और अधिक प्रगतिशील बनता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए खेलों को अपनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि बेहतर जीवन की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, देखते हैं कि खेल किसी भी देश की पहचान माने जाते हैं और गौरव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और पदक जीतते हैं तो पूरे राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। इससे खेल पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: साथ ही देखते हैं कि बड़े खेल आयोजनों से देश की संस्कृति और क्षमताओं का भी प्रदर्शन विश्व स्तर पर होता है। दोस्तों, खेल से मिलने वाले जीवन मूल्यों को लेकर अगर हम बात करें तो खेल केवल जीतना नहीं सिखाते बल्कि जीवन की अनेक मूल्य सिखाते हैं, जैसे कि ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य जैसे गुण, परिश्रम, सहयोग, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सम्मान की भावना। दोस्तों, ये गुण व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आज का जीवन पहले की तुलना में अधिक व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है। लोग घंटों बैठकर काम करते हैं और शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी स्थिति में खेलों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक हो गया है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय खेलों या शारीरिक गतिविधियों को समय दें तो हम कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: खेल जीवन में संतुलन बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। खेल केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करते हैं कशिश, तो वे पूरे देश का गौरव बढ़ाते हैं। खेल राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। खेलों के माध्यम से कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम में कि देश की पहचान विश्व स्तर पर मजबूत होती है। भारत के गाँव में खेलों की समृद्धि परंपरा रही है। कबड्डी, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा कई ऐसे खेल हैं जो ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ये खेल कम संसाधनों में खेले जाते हैं और शारीरिक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये तो हम जान पाए कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लेकिन वर्तमान में देखते हैं अंजलि जी कि खेल को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दोस्तों बच्चों का मोबाइल और इंटरनेट पर अधिक समय बिताना खेल को बढ़ावा देने में एक बाधा के रूप में सामने आया है। शारीरिक गतिविधियां इसके कारण कम हो गई है, साथ ही खेल मैदानों की कमी भी एक कारण है। अंजलि जी, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा का अभाव देखा जाता है और खेलों के प्रति जागरूकता की कमी भी एक कारण है, जिसके कारण आज खेलों के सामने ढेर सारी चुनौतियां सामने आई हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, हम देखते हैं कि इन सभी चुनौतियों का समाधान हमें अभिभावक और समाज को मिलकर करना होगा ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को धूमधाम से मना सके और जो हमारा उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का वो पूरा हो सके।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें चल रही है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर।
0: जी हाँ,
1: बातें यूं ही हमारी कार्यक्रम में आगे बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: पैर दिखाओ।
1: साथियों, उस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है
2: जी हाँ।
1: कि खेल मनुष्य के जीवन में केवल शारीरिक गतिविधि भर नहीं है, बल्कि वे जीवन को संपूर्णता से जीने की कला सिखाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: खेल कशिश हमें ये समझाते हैं कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: मैदान में बिताया गया समय केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि चरित्र को भी गढ़ता है।
2: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि खेलों से जुड़ा व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक साहस, सकारात्मकता के साथ कर पाता है।
2: बिल्कुल,
1: आज जब समाज में तनाव, प्रतिस्पर्धा, अकेलापन और अस्वस्थ जीवन शैली जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब खेल इन समस्याओं का एक स्वाभाविक और प्रभावी समाधान बनकर सामने आता है।
2: बिल्कुल,
1: खेल लोगों को जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और समाज में भाईचारे की भावनाओं को मजबूत करता है। वे बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा देते हैं, युवाओं को ऊर्जा और लक्ष्य प्रदान करते हैं और बुजुर्गों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
2: बिल्कुल,
1: हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि खेलों में लगाया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।
2: जी हाँ,
1: समय व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और भविष्य में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश होता है।
2: बिल्कुल,
1: जिस प्रकार कशिश शिक्षा ज्ञान देती है, उसी प्रकार खेल जीवन जीने की व्यवहारिक समझ प्रदान करते हैं। दोनों का संतुलन ही एक आदर्श और सफल व्यक्ति का निर्माण करता है।
2: बिल्कुल,
1: हम अपने घरों, विद्यालयों और समुदायों में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाए, बच्चों को खुले मैदानों तक पहुंचाने का अवसर दें, युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सक्रिय जीवन शैली अपनाएं।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ऐसा समाज जहां लोग खेलते हैं वहां स्वास्थ्य बेहतर होता है।
2: बिल्कुल,
1: संबंध मजबूत होते हैं और भविष्य अधिक उज्जवल बनता है।
2: जी हाँ,
1: खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान, बेहतर समाज बनाने की सबसे सुंदर प्रक्रिया है।
2: बिल्कुल,
1: खेलों की वास्तविक शक्ति और सबसे बड़ी उपलब्धि है।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दिवस पर अलग अलग देशों में खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, कार्यशाला और खेल प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालय और खेल संस्थानों में खेलों के महत्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इन सभी आयोजनों का उद्देश्य केवल एक ही है कि लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करना है।
1: बिल्कुल,
2: और उन्हें नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक दिवस नहीं है, बल्कि स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक जीवन का संदेश है। खेल व्यक्ति के साथ शरीर में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का आधार माना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि वे हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण गुण सिखाते हैं। साथ ही खेल समाज में एकता, भाईचारा और शांति को बढ़ावा भी देते हैं अंजलि जी, साथ ही हमारे युवा साथियों को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
1: जी हाँ,
2: ऐसे में आज आवश्यकता बस इस बात की है कि हम खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और बच्चों के साथ साथ युवाओं को भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यदि हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि खेल जीवन के उन दुर्लभ माध्यमों में से एक है जो व्यक्ति को एक साथ कई स्तरों तक विकसित करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: वे केवल शरीर को गति नहीं देते, बल्कि विचारों को दिशा, भावनाओं को संतुलन और व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करते हैं।
2: जी हाँ,
1: खेल हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर प्रयास, संयम, सहयोग और आत्मविश्वास भी उतने ही आवश्यक है।
2: बिल्कुल,
1: आज दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की शारीरिक सक्रियता कम होती जा रही है।
2: जी हाँ,
1: ऐसे समय में खेल हमें प्रकृति, लोगों और स्वयं से जोड़ने का कार्य करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: खेल के मैदान में व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं, तनाव और सामाजिक भेदभावों को पीछे छोड़ देता है और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को देखने लगता है।
2: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि खेलों को केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन की संस्कृति माना जाता है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा अंजलि जी। कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमें ये याद दिलाता है कि खेल केवल समय बिताने का साधन नहीं होकर स्वस्थ शरीर और बेहतर समाज की नींव है।
1: बिल्कुल,
2: खेल हमें मेहनत, अनुशासन, सम्मान और सकारात्मक सोच का पाठ पढ़ाते हैं। चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना हो दोस्तों, खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दोनों को बेहतर बना सकते हैं।
1: जी जी,
2: ऐसे में इस अवसर पर हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिदिन कुछ समय खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए हम अवश्य निकालेंगे।
1: जी हाँ,
2: हम अपने बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेंगे तथा खेल की भावना को जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि अंजलि जी, स्वस्थ युवा, स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: जी,
2: ऐसे में युवा साथियों, याद रखिए कि जो खेलता है वही खेलता है, जो सक्रिय रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि खेलों को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार सभी को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां हर व्यक्ति, विशेषकर बच्चे और युवा, खेलों से जुड़ सके।
2: बिल्कुल,
1: खेल जीवन का हिस्सा बनेंगे तब केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं बल्कि जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी तैयार होगा। यही वह मार्ग है श्रोता साथियों, जो एक सशक्त समाज, स्वस्थ राष्ट्र और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है।
2: बिल्कुल,
1: खेलों का वास्तविक महत्व इसी व्यापक दृष्टि में निहित है जो व्यक्ति के विकास को समाज और राष्ट्र की प्रगति से जोड़ता है।
2: बिल्कुल,
1: तो आशा करते हैं कशिश के आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से जो बातचीत रही है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर, वो उन्हें अवश्य पसंद आई होगी।
2: जी हाँ,
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा, उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
2: नमस्कार।
1: साथ ही श्रोता साथियों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। हमारे इस नंबर पर हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर से। फिल्म का नाम है आशिकी। गीत के बोल ही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पॉल डिकिस्टो, विलिस डिकिस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चनाताई गोड़ाने, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गोड़ाने। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने आशिक की फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी और कुमार सोनू जी ने। श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मजनू का टीला से। फिल्म का नाम है अनुराग, गीत के बोल हैं सुन रे पवन। इस गीत की फरमाइश करता है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ना चाह रही हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंडपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाह जी मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुंदरी पवन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है संतोष, गीत के बोल हैं बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं। इस गीत को आवाज़ दी है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुशानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से। उत्तम कुमार, उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका जी दिवाकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, निफरा नवाज, बेबी चाहत जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं डापकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है श्रामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। पुनावले से जुड़ रहे हैं अजीत सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, शाइशा जी सोनवनी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है हीना, गीत के बोल ही मैं हूँ खुश रंग हीना। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, नीति शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कोका बलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल और नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रही हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, ओशिका जी जंगेल, आदिति जी जंगेल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सलार पहलगाम से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली वर्मा, नीरा वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मैं हूँ खुश रंग हीना। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बोरखेड़ा पित्रामल से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशजी मुणत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुन्नाचार्य गंजडवारा से, यासीन हाशमी, नवजा बेगम, तौसीफ हाशमी, तोइनूर जी, कलीम अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुन्नाचार्य गाजियाबाद से, शिषपाल जी। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुन्नाचार्य रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। इसी बीच जुन्नाचार्य हैं पंडरपुर सिटी से सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, प्रशांत सिंधी, कृष्णा घुड़की जी। इस गीत के अनुरोध करता है रतलाम एमपी से जगदीश धाड़क, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह, शिवांगी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुन्नाचार्य हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवा श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुन्नाचार्य हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमोर, मानस जी राज। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने सिर्फ तुम फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भोपाल के राजस्थान से। फिल्म का नाम है हमराज। गीत की बोल ही ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो। इस गीत की फरमाइश करते हैं धर्मेंद्र चिपा, कपीत चिपा, पूजा परिहार जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे नोरियो चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बिबिसिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रही हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव, संगीता जी जाधव। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुद्रमेश शाहू। डुमराव बिहार से जुड़ रही हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से जुड़ रही हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, वितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही ना मुंह छुपा के जियो ना। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है एकता कॉलोनी रोहतक से। फिल्म का नाम है दोस्ताना, गीत के बोल ही बने चाहे दुश्मन जमाना। इस गीत की फरमाइश करता है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इस गीत के अनुरोध करता है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका वानी जी थांदी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आप सभी बने रहिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अंबाला हरियाणा से। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत की बोल है सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। इस गीत की फरमाइश करते हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मुन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा सी, शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फेसाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र सी, पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर, सोनाली ताइडे और नारायण इगले जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। धनोरी तेलीवाला से जुड़ना चाह रहे हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे तक सुबह 11 बजे से, जिसमें आप सुनते हैं दोस्तों आपके ही द्वारा भेजे गए पसंदीदा नगमे जो आप हमें व्हाट्सएप SMS के माध्यम से भेजते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको SMS करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, यानी कि जगह का आपको नाम लिखना है, और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर फिर से बताना चाहूँगी, हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइश का सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो साथियों, बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है सूरज, गीत के बोल हैं इतना है तुमसे प्यार मुझे ओ मेरे सजना। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष जी। इसी बीच और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं ओध्यन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त बघेल परिवार सदस्यगण। सुरेश चौरसा, सरोज चौरसा फरुखाबाद UP से जुड़ना चाह रहे हैं। हमारे श्रोता साथी और भी हैं जो नवाशहर से जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र सांधु, अनिता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मेक्स जी। बाबा कुटीर रायगढ़ से श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं इतना है तुमसे प्यार। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, इतना है तुमसे मेरे प्यार राजदार। इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश की गीत की ओर। फरमाइश का गीत अगला आया है श्रोता साथियों, विरजारा फिल्म का गीत आया तेरे दर पर दीवाना। ये फरमाइश हमारे बीच आई है सहारनपुर से और फरमाइश करता है सैयद मसूर, साइना अक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब जी। बुलढाणा से जुड़ना चाह रहे हैं, धनोरा विटाली से हैं, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, जलगांव जामोद, संतोष काटे और उषा काटे जी। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा। जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कटवासा, सचिन कटवासा, सतीश योगेश, युद्धव कटवासरा जी। जुड़ना चाह रहे हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। मारवाड़ बुलेरा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, जय नारायण चौहान। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले। पूना वाले पुड़े से अजय सोनवानी, करिश्मा अविका, शायसा सोनेने, विशाखा मंगलकर जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आया तेरे दर पर दीवाना।

श्रोता साथियों, जैसा कि वीर ज़ारा फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत था आया तेरे दर पर दीवाना, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ती हूँ अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश किशोर नगर अमरावती से आई है। फिल्म का नाम है, श्रोता साथियों बताना चाहूँगी, गीत के बोल हैं जाने दो मुझे जाना है। फिल्म का नाम है चल प्यार करे। गीत के बोल हैं, श्रोता साथियों अमरावती से आए हैं। हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने ये फरमाइश करता है। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी, बाबा साहेब ककणकर, साखरबाई ककणकर, परमेश्वरी रोहिणी जी, श्रावणी ईश्वरी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लड़कुल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका डुग्गू सिक्का, भाविक सिक्का और कोयल सिक्का। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से अनाशी शेख, नाजिर नाशिश, शाजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जाने दो मुझे जाना है।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथिया, गुप्त गीत के बोल हैं दुनिया हसीनों का मेला। इस गीत को आवाज दी उदित नारायण जी ने और फरमाइश करता जुड़ रहे अमरावती महाराष्ट्र से श्याम केटे, वंदना केटे, कार्तिक केटे, भाविका केटे और समस्त केटे परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इच्छित शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गोतारा, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन और हरिपाल कौर जी। अस्तपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक अंसारी। गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। बुलंदशहर महाराष्ट्र से हैं विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे। खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दुनिया हसीनों का मेला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, साथियों बताना चाहूंगी अकोट महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दो झूठ, गीत के बोल हैं अनुराधा पोटवाल जी ने ये गीत गाया है। श्रोता साथियों, गीत के बोल हैं छतरी ना खोल उड़ जाएगी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल, अंजिक्य पाटिल, आदित्य पाटिल, एन फोकमारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, इसी गीत के साथ में मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बताना चाहूंगी कालेगांव से जुड़ना चाह रहे हैं मराठवाड़ा महाराष्ट्र से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी कल्पना देशमुख। कुरावली से जुड़ना चाह रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी जी। गंजुटवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है छतरी ना खोल उड़ जाएगी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है दिल्ली बिहार कॉलोनी से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी से वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष यादव, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से है राहुल रचिता खुराना जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी

0: श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश की सिलसिला हमारे आपके साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं और ढेर सारी फरमाइशें और गीत को हम सुन रहे हैं श्रोता साथियों और मनोरंजन कर रहे हैं, इसी बीच बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है दोस्तों धर्मवीर फिल्म का, ओ मेरी महबूबा तेरी मर्जी मेरा क्या। मलकापुर महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोड़कर। पत्रोड़ से जुड़ना चाह रहे हैं विजय अंबाडकर, सुनीता, अक्षय, ऋषिकेश और राधिका अंबाडकर। गंजुडवारा गणेशपुर से फिरासत उसेल अल कमर जहां, सिफा शिवरीन और अल्फेश सेवाद शेख। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हदगांव महाराष्ट्र से शंकर गिरबड़े, दिलीप गिरबड़े, गिरबड़े परिवार के सभी सदस्यगण। गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरदी, राधा नामदेव जी। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुज देवांगन और ईशांत देवांगन जी। छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है ओ मेरी महबूबा।
1: नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से पढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, तेरी याद याद। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बेवफा। गीत के बोल हैं आकोट से। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवनचर्य, संजीव डाबी राव जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं श्रोता साथी हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी। वसीम महाराष्ट्र से हैं मास्टर विठल, सुषमा सूर्य से, परिदेश से, मायरा शुरू से जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी दोस्त उत्तर प्रदेश से हैं दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सिस्टम शाक्य। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गणेजा, पूनम गणेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। बरकाकाना से अफजाल तान, सोए सुल्ताना, सोनू तस्ते, निपिस साही, अफजल मलिक जी। हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं शमाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजीव राजे, राशि राजे, शीतल राजेश जी, मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, ममता रेखा नामदेव। और भी दोस्त आवारपुर से जुड़ रहे हैं शेख अबीब, छोटू भाई शेख, फरजान शेख, फारूक शेख, वसीम शेख, अफसाना शेख, अश्मिरा शेख, इरफान शेख, जिन्नत शेख, फरहान शेख। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों बिहार कॉलोनी से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन जुड़ना चाह रहे हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छन्नूलाल शिवा, सज्जन शाहू जी। और भी साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को, छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनितराज, सुमित सोम, मानस राज, गुणवंशिवास, कुरुणा शिवास, आयुष श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, मस्तान पुन्ना से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत जुड़ना चाह रहे हैं, छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजी योगिता श्रीवास। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अजमत अली और निशा और सभी घर के सदस्य जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अर्चना जोशी, सोहन जोशी, बानी चावला, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, हंसिका जोशी, वेदही जोशी, अंकिता जोशी। और मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी। उत्तराखंड से हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, लक्ष्मी, प्रियंका, सृष्टि, बन्नू, आरुष, शौर्य, दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है तेरी याद याद। तब तक आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है साथियों, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, आप सभी से हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपने दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

तो भाइयों बनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या, इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली सको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्टर कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप हमने फोन करी सको हमारे अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती हमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा, तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।

जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राज्य के स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
6: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे, आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
8: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
6: होवे, न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
7: हिंडो, स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
8: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
6: होवे, जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
8: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है खेल के महत्व को लेकर। श्रोता साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनकी ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता ही देश के भविष्य को दिशा देती है।
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ।
1: कशिश, यदि यही ऊर्जा सही दिशा में न लगे तो वो शक्ति कमजोर पड़ सकती है। खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: बिल्कुल,
1: खेल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास का आधार है।
0: जी हाँ।
1: आज के डिजिटल युग में जब युवा मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में अधिक समय बिताने लगे तब खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: खेल शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और जीवन को संतुलित बनाते हैं।
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: शोधों में पाया भी गया श्रोता साथियों कि नियमित खेल खुद युवाओं की शारीरिक क्षमता, एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले शुरुआत में एक प्यारा सा गीत सुनवाएं यहाँ पर।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं खेल के महत्व को लेकर। जैसा कि जागृति जी, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।
1: बिल्कुल,
0: यह कहावत केवल एक वाक्य नहीं है साथियों, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य भी है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में जहां तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम और सोशल मीडिया ने हमारे युवाओं के जीवन में अपनी जगह बना ली है, जिसके कारण खेलकूद से दूरी उनकी बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में खेलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ये जीवन को स्वस्थ सफल बनाने का एक माध्यम है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन के

0: जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है साथियों। इसी समय व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और भविष्य की नींव रखी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में खेल इस नींव को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर देखा जाए तो खेल शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: नियमित खेल कूद से साथियों शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डियां सुदृढ़ होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: देख सकते हैं जागृति जी कि खेलों के माध्यम से युवा साथियों का मोटापा नियंत्रित में रहता है, हृदय उनका स्वस्थ रहता है, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है और रक्त संचार भी बेहतर होता है।
1: जी हाँ,
0: देख सकते हैं कि आज अनेक युवा घंटों मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, जिससे श्रोता साथियों कई ढेर सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में खेल इस समस्या का प्रभावी समाधान हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि खेल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाते हैं। पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंताओं के कारण आज कई युवा तनाव और चिंता का सामना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेल तनाव को कम करने का प्रभावी माध्यम है। खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक विचारों में कमी आती है।
0: जी
1: हम
0: हाँ।
1: देखते हैं कि खेल युवाओं को हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं। जब कोई खिलाड़ी हारता है तो वो दोबारा मेहनत करना सीखता है।
0: बिल्कुल,
1: और जब वो जीतता है तो विनम्रता का महत्व समझता है। यही गुण जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिलाते हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम कर रहे हैं कि उनके जीवन में खेल का क्या महत्व है, और साथ ही ढेर सारी बातें जैसा कि हम जान भी पाए हैं कि जो खेल है वो शारीरिक स्वास्थ्य का आधार होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आगे ये बातें हमारी ऐसे ही और भी जरूर जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातें चल रही थी खेल के महत्व को लेकर। तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। कोई भी खिलाड़ी बिना अनुशासन के महान नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल,
0: खेल युवाओं को समय का महत्व, नियमों का पालन और जिम्मेदारी निभाना सिखाते हैं। जो युवा नियमित अभ्यास करते हैं, समय पर मैदान में पहुंचते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, वे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेल ये सिखाते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से प्राप्त होती है।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अनुशासन का जो करे सम्मान, सफलता उसके कदम चुनती है।
1: बिल्कुल,
0: तो जीवन में अकेले सफलता प्राप्त करना कठिन होता है, हर व्यक्ति को सहयोग और साथ की आवश्यकता होती है। खेल युवाओं को टीम भावना का पाठ पढ़ाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो खेल केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि खेलते समय शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो तनाव और चिंता को कम करते हैं। इससे साथियों हमारा मन प्रसन्न रहता है और जो व्यक्ति है वो सकारात्मक सोच भी विकसित कर पाता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, जहां आज परीक्षा, प्रतियोगिता और करियर की चुनौतियों के कारण युवा साथी तनाव का सामना कर रहे हैं, ऐसे में खेल उनके मानसिक संतुलन बनाए रखने में उनकी सहायता कर सकता है। साथ ही ये आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इससे उसका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: हम देख सकते हैं कि खेल युवाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसे में आत्मविश्वास जो है वो जीवन की सफलता की कुंजी है साथियों, और खेल इसे विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों में टीम का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है। खिलाड़ी सिखाते हैं कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण सामूहिक सफलता होती है।
1: बिल्कुल,
0: ये भावना भविष्य में उन्हें बेहतर नागरिक, कर्मचारी और नेता बनने में सहायता करती है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि हर समाज को अच्छे नेताओं की आवश्यकता होती है। खेल नेतृत्व के गुण विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। मैदान में कप्तान अपनी टीम का मार्गदर्शन करता है कशिश, निर्णय लेता है, कठिन परिस्थितियों में टीम का मनोबल बनाए रखता है।
1: जी।
0: खेलों से प्राप्त नेतृत्व क्षमता युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सहायता करती है। वे समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना और दूसरों को प्रेरित करना सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है कि खेल ही हमें नेतृत्व की पहचान करना सिखाते हैं, और जब हम नेतृत्व पहचान लेते हैं तभी युवा हमारे देश की शान बनते हैं।
1: बिल्कुल, अब यही बात करते हैं समय प्रबंधन सिखाने की। तो साथियों, खिलाड़ियों को पढ़ाई, अभ्यास और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे उनमें जागृति जी समय का सही उपयोग करने की आदत भी विकसित होती है। हम देखते हैं कि समय प्रबंधन एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है।
0: जी हाँ।
1: साथी दोस्तों, खेल जो है वो चरित्र निर्माण में भी सहायता करते हैं, यानी कि खेल व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि खेल ये सिखाते हैं कि ईमानदारी का गुण कैसा होता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे अंदर धैर्य, साहस, सहयोग और सम्मान जैसी जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा खिलाड़ी केवल मैदान में ही नहीं बल्कि जीवन में भी अच्छा इंसान बनने का प्रयास करता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जीवन में हमेशा जीत कभी नहीं मिलती, खेल हमें हार को स्वीकार करना और उससे सीखना भी सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई खिलाड़ी जागृति जी खेल में हारता है तो वह अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मेहनत करता है। और हम देखते हैं कि यही सीख जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक सम्मानजनक करियर भी बन चुका है। अनेक युवाओं के खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियां और आर्थिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं श्रोता साथी इस खेल के माध्यम से कि भारत में खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है, और कई राज्यों में खेल शिक्षा तथा खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: जी हाँ,
0: हाल के वर्षों में खेल संस्थानों और स्पोर्ट्स कॉलेजों में युवाओं की रुचि भी तेज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों यही कहना चाहेंगे कि खेल युवाओं के जीवन का अभिन्न अंग है। वे केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता की पाठशाला है। युवा शक्ति को सही दिशा देते हैं और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिस युवा के हाथ में खेल का मैदान होता है कशिश, उसके जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सफलता का नया अध्याय खुलता है।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इसी बात की कि प्रत्येक युवा अपने दैनिक जीवन में खेलों को स्थान दे। पढ़ाई और करियर जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण स्वस्थ शरीर और संतुलित मन भी है। खेलों को अपना कर युवा न केवल अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें तो हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और हम जान पाए हैं कि किस प्रकार से हमारे युवा साथियों के लिए खेल के ढेर सारे महत्व हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ पहले मनोरंजन करें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में सिर्फ आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि युवा शक्ति जब खेलों से जुड़ती है तब केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि मजबूत व्यक्तित्व, सशक्त समाज और महान राष्ट्र का निर्माण होता है। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: मैदान में बहाया गया पसीना जीवन की हर चुनौती को आसान बना देता है। इसलिए उठिए, खेलिए, सीखिए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में खेल के महत्व को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एवो केवाय जयवीरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तयवीरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं।
3: पर मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी।
2: जमीन पैसा माते बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है।
3: इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपना फैसला खुद लेवानी ताकत।
2: तो आओ बनो आजे मली ने आवाज उठावो, एटले हंगरी सूर्य, हंगरी बुने, हंगरी माए आपड़ा हक ने जमीन माते गर्व थकी उभी थई शके।
3: बोलने अधिकार किम की अधिकारस असली ताकत है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करी।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जो परंपरागत खेल हैं उनके माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो क्या ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवा दे हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जो परंपरागत खेल हैं वो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी जरूरी है और साथ ही उन्हें शिष्टाचार सिखाते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो कशिश, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं मांगेला जी सर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं की इन विशेष बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे।
0: जी बिल्कुल
1: सर। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: जी
1: सर, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम सच्चा बचपन से निरंतर जुड़ते रहते हैं और बच्चों से जुड़ी विशेष जानकारी आप हमारे श्रोता साथियों को देते हैं। सर, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि परंपरागत कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो बच्चों को शिष्टाचार भी सिखाते हैं, साथ ही उनका विकास भी इन खेलों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। तो सर, आज आप सबसे पहले हमारे श्रोता साथियों को यही बता दीजिए कि परंपरागत खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
2: जी, तो बहुत अच्छा विषय है आपका कि परंपरागत खेल शुरू से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहा है।
1: जी जी।
2: और शुरू से ही बच्चे हैं इनमें काफी रुचि लेते हैं। और देखिए, परंपरागत खेलों में शिष्टाचार बिल्कुल छिपा हुआ होता है, साथ में जो उसके अंदर आप बात करें विकास की, तो उम्र के अनुसार विकास भी उनके अंदर छुपा रहता है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये वर्तमान की आवश्यकता है अभी वर्तमान में, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल जैसी चीजें हैं उनके माध्यम से हम पुराने खेलों को भूलते जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: और ना ही हमारे माता पिता है, हमारा समुदाय है, उन खेलों की ओर बच्चों को अग्रसर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वो प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को बच्चों को लेकर सक्रिय रहना होगा।
1: जी जी।
2: और जो हमारे परंपरागत खेल है, जो हमारे संस्कृति हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको हमें वापस से पुनः जीवित करके हमें बच्चों को शिष्टाचार के साथ विकास में भागीदारी बनाने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आप देखोगे कुछ बहुत सारे पुराने खेल है हमारे, जिसमें से मुख्य रूप से जो बच्चे हमारे खेलते हैं वो अधिकतर मिट्टी में ही खेले जाते हैं, किसी पीछे मैदान की जरूरत भी नहीं है। हमारे घर का आंगन होता है जो गाँव में होता है मैदान। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि सितोलिया है, तो सितोलिया हम खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते थे, हमने भी खेला है, तो अभी ये बहुत कम देखने को मिलता है।
1: जी बिल्कुल।
2: क्योंकि ये बहुत ही रोमांचित खेल था कि आप जो सितोलिया है, एक बच्चा है जो उसको गेंद से मारता है, गिरने के बाद बाकी जो टीम होती है वो टीम उसका चुनाव करती है।
1: जी जी।
2: तो अगर यहाँ के हम बात करें तो यहाँ पे टीम वर्क, अब हम बात करें शिष्टाचार की, तो बच्चे यहाँ पे टीम वर्क सीख रहे हैं।
1: जी जी।
2: क्योंकि सब मिलके उसको चुनने के पीछे वो सोच रखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: और वो सोच उनके अंदर विकसित होती है कि एक टीम कैसे काम करती है। तो ये बहुत बड़ा है कि बच्चे टीम वर्क सीख रहे हैं और उनके अंदर एक शिष्टाचार है वो पैदा हो रहा है कि हमें एक टीम की तरह जो भावना होती है टीम की, वो कहीं ना कहीं शिष्टाचार से जुड़ी होती है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि सितोलिया एक ऐसा खेल है जो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरीके से जो बोल मार कर हमने पत्थरों को गिराया है उन्हें हमें कैसे टीम के सहयोग के साथ जमाना है, और साथ ही हमें किस तरीके से उस गेंद का प्रयोग करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत अधिक तेज से अगर हम वो गेंद मारते हैं तो किसी को चोट लगने की संभावना रहती है। तो बहुत ही सक्रियता से और धैर्य के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से बच्चे जो है वो बहुत सारे शिष्टाचार को सीख सकते हैं।
2: जी। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे लुका छिपी है, हम खेलते थे, अभी बहुत कम है जो गांव में बच्चे खेलते हैं।
1: जी जी।
2: लेकिन पहले जैसा ट्रेंड नहीं है, अभी बहुत कम बच्चे खेलते हैं। इसमें अगर बात करें लुका छिपी की, तो एक व्यक्ति है जो वो बाहर जाएगा, बाकी बच्चे अपने आस पड़ोस में छिप जाते हैं, तो वो उसको ढूंढता है, तो सबसे पहले जो उसको ढूंढता है वो आउट होता है। इस तरह से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की जो भावनाएं हैं
1: जी जी
2: वो आती है।
1: जी बिल्कुल।
2: साथ में आप देखोगे इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो भावना है वो भावना विकसित होती है एक तो सोच की।
1: जी बिल्कुल।
2: अगर रचनात्मक सोच की, बच्चा पहले सोचेगा खड़ा होकर कि कहाँ कौन छिपा होगा,
1: जी जी
2: ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं जो रचनात्मक सोच का जो विकास है, हम विकास भी इसको कह सकते हैं। दूसरा ये एक विषय है, शिष्टाचार भी है, क्योंकि हम क्रिटिकल अगर सोचते हैं, रचनात्मक तब सोचते हैं, तो कई विषय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो
1: सर,
2: उसके माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं।
1: जी जी।
2: इसी तरह आप देखोगे गिल्ली डंडा, हालांकि कई खेल ऐसे भी जो थोड़े रिस्क भी होती है, लेकिन बच्चे बड़े मजे से उसको प्लानिंग के साथ खेलते हैं।
1: जी, जी, बिल्कुल।
2: तो गिल्ली डंडा आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में खेलते हैं और हमारे क्षेत्र में भी काफी बच्चे खेलते हैं अभी भी, लेकिन उतना ज्यादा ट्रेड नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी सी जोखिम भी रहती है। लेकिन उसमें भी आप देखोगे तो उसके माध्यम से बच्चे है जो गिनना सीखते हैं कि कितनी दूर गई, तो उस डंडे से वो नापते हैं
1: जी बिल्कुल
2: कि कितने दूर गई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर चीज में सीखना, आपका शिष्टाचार, आपस में तालमेल बच्चों का,
1: जी जी,
2: किस तरह से सामाजिक जो चेंजेस है वो आते हैं तालमेल से।
1: जी जी।
2: तो तालमेल बच्चे सीखते हैं कि कहीं ज्यादा कम हो जाता तो आपस में समाधान कर लेते हैं कि चलो जी जी। दो नहीं था एक था, तो उस तरह की जो भावनाएं वो विकसित होती है। दूसरा हमारे जैसे परंपरागत है आपने सली खेल, सली में क्या होता है कि एक डंडा होता है उसको मिट्टी में छिपा दिया जाता है
1: जी बिल्कुल,
2: और उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक बार हाथ देना होता है, अगर वो मिल जाता है तो वो उसको पॉइंट मिलते हैं और वो आउट नहीं होता है
1: जी जी।
2: अगर वो एक वन टाइम में उसको नहीं निकाल पाता है तो फिर वो क्या होता है कि वो आउट हो जाता है
1: जी,
2: उसकी बारी समाप्त हो चुकी है, अब दूसरे की बारी आएगी। इसमें बच्चे जो है आपसी तालमेल के साथ में वो सोच रखते हैं कि कहाँ वो हो सकता है, तो एक सटीक जो निशाना है, सटीक जो जानकारी है
1: जी जी,
2: उसको ढूंढने में वो सक्षम हो पाते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरह से कहाँ पे वो हो सकता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो इससे जीवन में आने वाले बच्चों के ये आइडियाज है जो पूरे जीवन में उनके काम आते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: तो इस तरह से ये जो सारे खेल है वो कहीं ना कहीं शिष्टाचार से जुड़े हुए हैं, इनमें हर खेल में शिष्टाचार छिपा है। जैसे आप जैसे गोटी खेल होता है तो उसमें हम एक जो मिट्टी पे एक बना लेते हैं उसमें 9 गोटियां होती है, उनके माध्यम से वो बच्चे खेलते आपस में
1: जी जी,
2: तो उसको जैसे उसको मारना, एक गोटी कम हो गई वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा की भावना और बच्चों में जीतने का जुनून है वो पैदा होता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये कहीं ना कहीं जीवन भर जीतने का जुनून है वो आगे भी काम देता है
1: जी जी।
2: इसी तरह आपको बताऊं जैसे हमारे यहाँ खेल कंकड़, जो ज्यादातर हमारी बालिकाएं खेलती है, वो 5 कंकड़ लेती है
1: जी जी,
2: उसको उछालती है फिर नीचे वाले कंकड़ हाथ में लेती है। तो इस तरह से वो जो ध्यान केंद्रित वाला जो बात हम करते हैं
1: जी बिल्कुल,
2: कि किसी विषय को कैसे ध्यान से देखा जाए और कैसे ध्यान से उसके साथ खेला जाए
1: जी बिल्कुल।
2: तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन भर के लिए शिष्टाचार जो है वो पैदा होगा, क्योंकि आप ध्यान केंद्रित के साथ आप जो काम कर रहे हैं
1: जी जी,
2: वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाता है
1: जी बिल्कुल।
2: क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में ऐसे वक्त आता है कि आप ध्यान केंद्रित नहीं होगा किसी काम को लेकर, तो परिणाम मुझे लगता है कि कभी मुश्किल से सफलता तमक आ सकते हैं, बाकी असफल का ज्यादा चांसेस रहते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये बच्चों से जुड़ा हुआ है जो जीवन भर काम देता है। इसके साथ ही आप देखोगे तो दूसरा खेल है इमली गुट्टी है, जैसे इमली होती है ना हमारी, तो उसके जो दाने होते हैं उसको बीच में से बच्चे चीर देते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: और जैसे लूडो हम जैसे खेलते हैं
1: जी जी।
2: उसी तरह से होता है वो, जो 4 दाने चीर देते हैं और फिर वो लोग उसको घुमा के खेलते हैं और नीचे फ्रेम बनाते खेल
1: जी जी,
2: उस फ्रेम के माध्यम से खेलते। तो यहाँ पे बच्चे गिन रहे हैं, सीख रहे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से वो कर रहे हैं, वो उत्साह एक दूसरे का बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे जीवन में भी हमारे जो है काफी काम आता है। तो ये जो सारे खेल है ये हमारे जीवन में काफी काम आते हैं और इससे शिष्टाचार के साथ साथ में सीखना, बच्चों का विकास, अगर छोटे बच्चे इस तरह के खेल खेलते हैं तो उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषा, रचनात्मक विकास, जो 5 कंपोनेंट है, जो 5 आयाम है, उनमें काफी है जो सुधार होता है
1: जी बिल्कुल। सर आपने सही कहा, तो जैसा कि आप बहुत अच्छे परंपरागत खेल हैं जो अभी के समय में हम भूलते जा रहे हैं, उनको लेकर ढेर सारी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवा रहे हैं, तो सर ऐसे और कौन कौन से अन्य खेल हैं जो भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिससे वो शिष्टाचार, विकास और बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं
2: जी। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं तो हमारे पास में जैसे कंचे हैं, तो कंचे हम लोग पुराने जमाने से खेलते हैं हमारे बच्चे, और वो कंचे आजकल बहुत मुश्किल से गाँव में उपलब्ध हो पाते हैं
1: जी जी बिल्कुल।
2: लेकिन एक काफी रोमांचित खेल था और इसको वापस से लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे में बहुत ही, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है या हाफ डे हो जाता है
1: जी जी बिल्कुल,
2: तो आजकल बच्चे क्या है आपस में ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, लेकिन एक अच्छा माध्यम है कि उनको समय बिताए वो खेल के माध्यम से, मिट्टी के साथ वो खेलें
1: जी जी।
2: तो कंचे में बच्चे गिनना सीखना, क्योंकि आप मारोगे तो कितने कंचे बाहर आए
1: जी बिल्कुल,
2: तो वो हाफ के होंगे, उसमें जीत की जो भावनाएं होती है वो काफी छिपी रहती है, जो भी ज्यादा कंचे उसके आएंगे वो जीतेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये खेल काफी भावना से जुड़ा हुआ है और ये भावनाएं एक दूसरे के प्रति बच्चे के कि चलो मेरी बारी आ गई, मेरे पास इतने हैं, आपकी चलो आपकी बारी है। तो इस तरह से बच्चे आपस में जो कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: साथ में गीड़ा खेल होता है जो आपने सुना होगा कि हमारे 8-9 बच्चे होते हैं वो ग्रुप में एक मिट्टी का जो ढेला बना के उस पे एक डंडा लेके खड़े होते हैं और एक सदस्य होता है जो एक कपड़े की गेंद होती है तो उनको मारते हैं और सामने से उसको प्ले करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है ध्यान केंद्रित के साथ कि कब गेंद आई, अगर टच हो गया तो आउट हो जाएगा, तो जीतने के साथ वो ध्यान केंद्रित जो बात है वो बच्चों को कहीं ना कहीं वहां से निकल कर आती है।
1: जी बिल्कुल।
2: और हमेशा वो जीवन भर वो चीजें काम देती है।
1: जी
2: हाँ। इसी तरह बहुत सारे खेल और भी है हमारे, आप देखो कबड्डी हमारे पुराने जमाने से खेलते हैं और कबड्डी आज भी गाँव में प्रचलित है और अधिकतर बच्चे जो मिल जाएंगे आपको।
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये सारे जो खेल है ये एकदम बच्चों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, हमारी समुदाय की संस्कृति और हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है।
1: जी बिल्कुल।
2: और हर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खेल है उनको खेलने से बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ का आपके बच्चे सिर्फ खेल ही नहीं खेल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: वो उनकी भावनाओं से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, आपकी कई प्रकार की कौशल है वो विकसित हो रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: और शिष्टाचार आपस में मिलकर किस तरह से रहा जाए और किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करें, इन सारी चीजों पर वो बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं जो कि आगे जाके उनके जीवन में काम आती है। तो इन सभी को हमें पुनः स्थापित करें। जहाँ पे बच्चे अभी भी खेल खेलते वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं खेलते तो जो समुदाय है वो बच्चों को प्रेरित करे ताकि इन खेलों की ओर वापस ध्यान आकर्षित हो सके।
1: जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवा दिया है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी धन्यवाद।
1: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में मांगीलाल जी सर जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो परंपरागत खेल हैं उनसे अवगत करवाया है और साथ ही हम उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वो जो परंपरागत खेल हैं वो बच्चों को शिष्टाचार सिखाते हैं और साथ ही उन खेलों के माध्यम से बच्चों का विकास भी बहुत अच्छे से होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ हम देख रहे हैं कि अभी के समय में ये परंपरागत खेल हमसे बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हमारी जो पूरी निर्भरता है वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उन पर निर्भर होती जा रही है। तो ऐसे में हम हमारे जो माता पिता हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम हमारे बच्चों को फिर से इन परंपरागत खेलों से जोड़ें ताकि वो उनके विकास के साथ साथ अच्छे शिष्टाचार को इन खेलों के माध्यम से सीख पाए।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत सुनवा दें हम।
1: जी बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए। इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
1: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नर्तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है, मानी दुआ पितानी उम्मीद निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो, एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुन, हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: किसान भाई बहन गीत तो आयशो पुरु नणास गीत हाथे पड़ा सूटा। उम्मीद कर की जे भी बातें रही कार्यक्रम खेती बाड़ी माध्यम थकी ये आपने गमी होंगे। आपने अमारो आज नो आ कार्यक्रम ने अन्य सालवा वाला गीत संगीत केवा लाग्या एना बारे में आप राय सुझाव आली शको अमारे ना पता माते।
1: होवे भाई बहनो लखी लो अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कूपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाई बहन फेरी मलंगा अणास कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
2: राम राम राम राम, राम।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करी सु।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है खेल से हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर। आज हम देखते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो बड़ी भागदौड़ भरी हो गई है।
0: जी हाँ,
1: हम सभी अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है।
0: जी हाँ,
1: कोई मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने हमारी शारीरिक गतिविधियों को काफी कम कर दिया है। ऐसे में खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार भी है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि खेल हमारे शरीर, मन और जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं खेलों से हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि खेल मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार भोजन, पानी, स्वच्छ वायु हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार खेल भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में लोगों की जीवन शैली व्यस्त हो गई है, आरामदायक होती जा रही है। श्रोता साथियों, लोग घंटों तक मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इसके कारण हम अंजलि जी देखते हैं कि अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने लगती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: ऐसे समय में खेल न केवल हमारे लिए मनोरंजन का साधन है साथियों, बल्कि स्वस्थ जीवन की कुंजी भी है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि खेल हमारे शरीर को भी सक्रिय बनाकर रखता है।
1: जी हाँ,
0: जब हम किसी खेल में भाग लेते हैं श्रोता साथियों, तो हमारे शरीर के लगभग सभी अंग कार्य करते हैं।
1: जी जी,
0: इससे हम देखते हैं कि शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और हमारी मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती हैं। साथ ही श्रोता साथियों, नियमित रूप से खेल खेलने वाले लोगों को मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप और हृदय जैसी समस्याएं होती हैं वो भी नहीं होती हैं। हम देखते हैं कि खेल हमारे शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को भी जलाने में मदद करते हैं और हमारे वजन को नियंत्रित रखते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि मनुष्य का शरीर सक्रिय रहने के लिए बना है। जब हम नियमित रूप से खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग जो हैं वो बेहतर ढंग से काम करते हैं। खेल केवल बच्चों के लिए ही नहीं मनीषा, बल्कि युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है। खेल हमें फिट रखते हैं, ऊर्जा देते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर भी नियमित शारीरिक

0: यही अगर श्रोता साथियों को बताएं कि इससे मानसिक लाभ क्या प्राप्त होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो हम देखते हैं कि खेल केवल शरीर को ही नहीं साथियों बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं। आज तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेल इन समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब व्यक्ति खेल खेलता है तो उसके शरीर से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो उसे खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं।
1: जी जी,
0: इससे हम देखते हैं कि तनाव कम होता है और हमारा मन है वो भी प्रसन्न रहता है।
1: बिल्कुल मनीषा, खेलों के दौरान शरीर में रक्त संचार तेज होता है, इससे हृदय मजबूत बनता है और बेहतर तरीके से काम करता है।
0: जी हाँ,
1: नियमित खेल कूद से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। श्रोता साथियों, आज मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। घंटों बैठकर काम करना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख कारण है।
0: जी
1: हाँ, खेल शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को चलाने में मदद करते हैं, इससे वजन नियंत्रित रहता है और शरीर संतुलित बना रहता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि अनुशासन और समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो हम देखते हैं कि खेल व्यक्ति को अनुशासन सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए नियमित अभ्यास, समय पर उठना, संतुलित भोजन करना और नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही आदतें व्यक्ति के जीवन में अनुशासन लाती हैं। खेल समय के महत्व को समझाने में भी सहायता करता है। खिलाड़ी अपने अभ्यास, पढ़ाई और अन्य कार्यों के बीच संतुलन बनाना सीखता है। यही गुण श्रोता साथियों जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है।
1: जी जी मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें कर रहे हैं कि खेल किस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से आगे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं मनीषा बात करें कि खेल किस तरीके से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, आज तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और आर्थिक चिंताओं के कारण लोग मानसिक दबाव महसूस करते हैं।
1: जी हाँ।
0: खेल तनाव को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। खेलते समय मन का ध्यान समस्याओं से हटकर गतिविधियों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे मानसिक राहत मिलती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे मनीषा कि जब कोई खिलाड़ी नया कौशल सीखता है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: जी हाँ।
0: छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह जीवन की अन्य चुनौतियों का भी सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: खेलों में ध्यान, रणनीति और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इससे मस्तिष्क सक्रिय रहता है और एकाग्रता बढ़ती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए खेल अत्यधिक उपयोगी है। नियमित खेल की गतिविधियों से महिलाओं की शारीरिक फिटनेस भी बनी रहती है। हम देखते हैं कि खेलों से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, मोटापे जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा खेल महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उनके मानसिक तनाव को भी कम करता है। हम देखते हैं कि आज अनेक महिलाएं विभिन्न खेलों में देश और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। इससे हम देखते हैं कि दूसरी महिलाएं भी देखकर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित होती हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। जैसा कि आप महिलाओं के लिए बता रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं के लिए भी खेल फायदेमंद होते हैं, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि नियमित खेल कूद से महिलाओं में मोटापा, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम कम किए जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही यह उन्हें अधिक ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। मनीषा, कह सकते हैं श्रोता साथियों से कि यह धारणा गलत है कि खेल केवल युवाओं के लिए होते हैं। बुजुर्ग लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार पैदल चलना, योग, हल्के व्यायाम, बैडमिंटन और अन्य सरल गतिविधियां कर सकते हैं। इससे उनका शरीर सक्रिय रहता है, जोड़ों की जकड़न कम होती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। खेल टीम भावना सिखाते हैं। खेलते समय हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। इससे आपसी सहयोग, भाईचारा और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: खेल जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को कम करके लोगों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमें रोजाना कम से कम 30 मिनट खेल या शारीरिक गतिविधियां करनी है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को मोबाइल से अधिक मैदान की ओर प्रेरित करना है। स्कूलों और गांवों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना है। महिलाओं और लड़कियों को भी खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्वास्थ्य निवेश समझना है, क्योंकि खेल केवल समय बिताने का साधन नहीं होते हैं मनीषा, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में खेलों को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों में खेल गतिविधियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
0: जी जी।
1: गांव और शहरों में खेल के मैदान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों को पढ़ाई तक सीमित नहीं रखकर उन्हें खेलों के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वे हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। खेल न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं श्रोता साथियों, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व जैसे गुण भी हमारे अंदर विकसित करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में खेलों को स्थान देना चाहिए।
0: जी।
1: यदि श्रोता साथियों हम नियमित रूप से खेलों में भाग ली तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं वो भी हल होने लगेंगी और हम सुख और सफल और संतुलित जीवन जी सकेंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, एक मैदान में खेला गया एक घंटा हमें कई बीमारियों से बचा सकता है, मन को प्रसन्न रख सकता है और जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। खेल हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल जीतने का नाम नहीं बल्कि प्रयास करते रहने का नाम है। वे हमें गिरकर उठना, हार कर सीखना और आगे बढ़ना सिखाते हैं।
1: जी हाँ।
0: हम अपने परिवार, बच्चों और समाज को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन ही एक मजबूत समाज का निर्माण करता है।
1: हाँ।
0: इसलिए हम सभी को संकल्प लेना है कि हम स्वयं भी खेलेंगे, दूसरों को भी खेलने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वास्थ्य से भरपूर, ऊर्जावान तथा जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से खेलों से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत और गीत संगीत आपको अवश्य पसंद आए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर, जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ रहता है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान देता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत जरूरी भी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में जो मेरी आपसे बातें रहेगी उसे आप ध्यान से सुनिएगा साथियों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धैर्य और मेहनत के रिश्ते को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें धैर्य की कमी होती है, जिसके कारण वो मेहनत करते भी हैं तो भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं ढेर सारी बातें इस विषय को लेकर आपसे करूंगी और गीत संगीत भी कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारे होंगे साथियों। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए दोस्तों पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर हम अपने विषय की ओर फिर से बढ़ेंगे।

दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सपनों की उड़ान कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों आज का विषय मैं आपको गीत से पहले बता चुकी हूँ कि हम बात कर रहे हैं धैर्य और मेहनत के रिश्ते को लेकर। साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन संघर्ष, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है साथियों, तो कोई शिक्षक, साथ ही कोई कलाकार भी बनना चाहता है, तो कोई किसान होकर भी नई मिसाल कायम करना चाहता है। लेकिन दोस्तों केवल सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती है। सपनों को साकार करने के लिए दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो जरूरी होते हैं, और वो है धैर्य और मेहनत। साथियों ये दोनों ऐसे साथी हैं जो जीवन की हर कठिन राह में हमारा साथ देते हैं और उस कठिन राह को आसान भी बना देते हैं। यदि मेहनत जीवन की गाड़ी का पहिया है साथियों, तो धैर्य उसका संतुलन है। मेहनत बिना धैर्य के अधूरी है और ठीक उसी प्रकार धैर्य बिना मेहनत के अधूरा है। हम देखते हैं कि आज के समय में लोग जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों में उनके पास नाम, पैसा और सम्मान सारी चीजें आ जाएं। लेकिन जैसा कि हम प्रकृति का नियम तो जानते ही हैं कि हर अच्छी चीज समय लेकर ही तैयार होती है। बीज बोने के बाद किसान तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता साथियों, ठीक उसी तरह हमें भी सफलता की चाह रखनी है लेकिन उसका लालच नहीं करना है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो किसान होता है वह धैर्य रखता है, खेत को सींचता है, मेहनत करता है और समय आने पर फसल अपने आप ही तैयार हो जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है दोस्तों कि हर अच्छी चीज हमें सही समय पर ही मिलेगी। इसी के साथ अगर बात करूं धैर्य की, तो श्रोता साथियों धैर्य का मतलब चुपचाप इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, हार न मानना और विश्वास बनाए रखना। क्योंकि दोस्तों जब जीवन में समस्याएं आती है ना, तो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि तू तो बार बार असफल हो जाता है। तो श्रोता साथियों आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताएं हमारे सामने जरूर आएंगी, लेकिन हमें उस वक्त टूटना नहीं है, बल्कि हमें शांत मन से आगे बढ़ते रहना है और वही हमारा धैर्य है और वहीं से हम धैर्यवान कहलाने लगेंगे। हम देखते हैं कि धैर्य का गुण हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख की प्रक्रिया बनी ही रहती है साथियों। इसलिए हमें कभी भी अपनी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उसे चुनौती देकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मनुष्य जीवन ही संघर्षमय जीवन कहलाता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारा जीवन सीधा साधा होता, हमें जो चीज चाहिए वो हमें फटाफट से मिल जाती, तो जीवन को जीने का मजा हमें नहीं आता साथियों। इसलिए थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ा थोड़ा अनुभव, थोड़ी थोड़ी समस्याएं और थोड़ा थोड़ा हल, साथ ही थोड़ा थोड़ा सुख भी हमें हमारे जीवन में मिला है, जिसके कारण हम उसका मजा ले सके। तो इस तरीके से दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है। ये बातें मैं आगे भी करूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत का विषय बहुत अच्छा चल रहा है, कार्यक्रम के माध्यम से धैर्य और मेहनत के रिश्ते को लेकर हम बात कर रहे हैं, और गीत से पहले हम धैर्य के वास्तविक अर्थ को जान पाए थे। हमने जाना था श्रोता साथियों कि धैर्य जो होता है वो हमें बहुत कुछ नया सिखाता है। धैर्य हमें ये बताता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने भीतर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो धैर्य नहीं रखेगा तो वह जल्दबाजी में निर्णय लेगा, और जल्दबाजी में निर्णय लेने से श्रोता साथियों हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण हम कठिनाइयों में पड़ जाते हैं और फिर हमें सफलता मिलती है और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, धैर्य रखने से हम सही निर्णय भी ले पाएंगे और अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर पाएंगे। तो जैसा कि गीत से पहले धैर्य के बारे में तो बात हो चुकी थी, यही बात करते हैं मेहनत के बारे में। साथियों, मेहनत जो होती है वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति श्रोता साथियों मेहनत के नाम पर ही सफल हुआ है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मेहनत के अपनी सफलता तक पहुंच गया हो। इसलिए मेहनत वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। दोस्तों, अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं तो एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता रहता है, तब जाकर वह परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, वहीं एक खिलाड़ी वर्षों तक अपने क्षेत्र में अभ्यास करता रहता है, तब जाकर वह कोई पदक जीतता है। वहीं एक किसान साथियों तपती धूप में खेत में काम करता रहता है, तब जाकर अनाज पैदा हो पाता है। हम कह सकते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है श्रोता साथियों। इसलिए धैर्य और मेहनत जैसे जो गुण है वो हर व्यक्ति के जीवन में होने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों धैर्य और मेहनत एक दूसरे के पूरक है। यदि मेहनत की जाए लेकिन धैर्य न हो तो इंसान जल्दी निराश हो जाता है, और यदि धैर्य हो श्रोता साथियों लेकिन मेहनत न की जाए तो सपने केवल कल्पना बनकर ही रह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई युवक है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। साथियों, वह कुछ महीनों तक तो मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। यदि उसके पास धैर्य नहीं होगा तो वह तैयारी छोड़ देगा, लेकिन यदि उसके पास धैर्य है श्रोता साथियों तो अपनी गलतियों से सीखेगा, सुधारेगा और फिर से लगातार मेहनत करना शुरू करेगा, तो एक न एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों कि जीवन में केवल काम करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही समय पर टिके रहना भी बहुत जरूरी होता है। हम देख सकते हैं कि धैर्य और मेहनत का गुण जो है उसे सिखाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण प्रकृति का है। जैसे कि प्रकृति जो है वो हमें धैर्य और मेहनत का सुंदर संदेश देती है। जैसे कि बीज से वृक्ष बनने तक का उदाहरण, दोस्तों एक छोटा सा बीज जो होता है वो मिट्टी में दबाया जाता है, वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे पानी, धूप और समय चाहिए होता है। धीरे धीरे वह अंकुर बन जाता है और फिर पौधा और फिर अंत में विशाल वृक्ष। यदि श्रोता साथियों प्रकृति भी धैर्य रखती है तो मनुष्य को भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार नदी रास्ते में आने वाली चट्टानों से नहीं डरती, वह लगातार बहती रहती है और अंत में अपना मार्ग बना ही लेती है। श्रोताओं, यह हमें ये सिखाता है कि निरंतर मेहनत और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर सूर्य का उदाहरण देखें श्रोता साथियों, तो सूर्य रोज धीरे धीरे उगता है, वह कभी जल्दबाजी नहीं करता लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। इसी प्रकार दोस्तों, धीरे धीरे की गई मेहनत भी हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हम कह सकते हैं कि आज के हमारे युवा साथी जो हैं, वो जल्दी सफलता पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया, चमक दमक की दुनिया देखकर दोस्तों कई बार हम अधीर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि दूसरों को बहुत चीजें जल्दी मिल जाती है और मुझे क्यों नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है, तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है और असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर बनती है। श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि असफलता हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता श्रोता साथियों, उसे शायद कभी नया प्रयास ही नहीं मिलता करने को। कई लोग पहली हार के बाद भी टूट जाते हैं, लेकिन महान लोग असफलता को कभी अंत नहीं मानते, उससे सीखते हैं और फिर दुगुनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारे सामने ऐसे कई महान व्यक्तियों के उदाहरण हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने श्रोता साथियों कई असफलताओं का सामना किया लेकिन धैर्य और मेहनत कभी नहीं छोड़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वे भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। वहीं किसान और मजदूर भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे कि हमारे समाज में दोस्तों किसान और मजदूर सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं,
कठिन परिस्थितियों में भी वे लगातार मेहनत करते रहते हैं, धैर्य के साथ जीवन चलाते हैं और उनका जो जीवन है वो हमें ये सिखाता है कि मेहनत और धैर्य ही वास्तविक ताकत होती है। ऐसे में श्रोता साथियों, आपको भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत के गुण को अपनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य और मेहनत जीवन के दो ऐसे दीपक हैं जो अंधकार भरे रास्ते को भी रोशन कर देते हैं। दोस्तों, धैर्य हमें टूटने नहीं देता और मेहनत हमें कभी रुकने नहीं देती। ये दोनों ही मिलकर दोस्तों साधारण व्यक्ति को भी असाधारण सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी सफलता पाने की दौड़ को छोड़कर हम दोस्तों नियमित रूप से प्रयास करना शुरू कर दें। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आलोचना भी करेंगे, कई बार तो दोस्तों आपको असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ मेहनत करता है वही अंत में जीतता है। याद रखिए दोस्तों, फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी और आपके सपनों को एक नई उड़ान देगी। साथियों, तो ये थी आज के हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी कुछ आपसे महत्वपूर्ण बातें। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। तो भाइयों बनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या, इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली शको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 307001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती अमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा, तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।